तुझे। समाचार के साथ मैं मनोज। असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से होगी। सबसे पहले डाक मतपत्र की गिनती की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से गणना सुबह 8:30 बजे शुरू होगी। शुरुआती रुझान दोपहर तक मिलने का अनुमान है। निर्वाचन आयोग ने सुव्यवस्थित मतगणना के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। ये मतगणना असम की 126, केरलम की 140, तमिलनाडु की 234 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए होगी। पश्चिम बंगाल में आज 293 सीटों की मतगणना होगी। फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए राज्य में इस महीने की 21 तारीख को दोबारा वोटिंग होगी और मतगणना 24 मई को की जाएगी।

0: जनादेश 2026
1: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
0: आज सुबह 8:30 बजे से
1: मतगणना की पल पल की खबर,
0: हर सीट की सटीक जानकारी,
1: संवाददाताओं से ताजा हाल
0: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण
1: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
0: जनादेश 2026।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रक्षा त्रिवेणी संगम विषय पर उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये संगोष्ठी परिचालन संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन और एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगी। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना की उत्तरी कमान और केंद्रीय कमान तथा भारतीय रक्षा निर्माता सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि लिपुलेख दर्रा 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक प्रमुख मार्ग रहा है और इस मार्ग से यात्रा दशकों से जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नेपाल के क्षेत्रीय दावों के संबंध में कहा कि भारत लगातार ये कहता रहा है कि ऐसे दावे ना तो उचित हैं और न ही ऐतिहासिक तथ्यों और सबूतों पर आधारित हैं। इससे पहले नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई है। नेपाल ने कहा है कि यह क्षेत्र उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि तीर्थ यात्रा के मार्ग को अंतिम रूप देने से पहले उससे परामर्श नहीं किया गया था। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कल झारखंड के रांची में उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं से न्यायिक व्यवस्था में चुनौतियों, सुधारों और अधिवक्ताओं की भूमिका पर चर्चा की। इस दौरान श्री मेघवाल ने अधिवक्ताओं से न्याय प्रणाली को सुलभ और सशक्त बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। इसके बाद उन्होंने सांसद सांस्कृतिक महोत्सव सह स्वदेशी मेला के समापन समारोह में भाग लेकर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। होर्मुज की खाड़ी में फंसे जहाजों के लिए अमेरिका प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस परियोजना से सैकड़ों जहाजों और लगभग 20,000 नाविकों को सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध से तटस्थ और असंबद्ध देश प्रभावित हुए हैं और अमेरिका इन देशों के जहाजों को प्रतिबंधित जल क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकलने में सहयोग करेगा। इस बीच पश्चिम एशिया में संघर्ष विराम को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। समझौते के लिए ईरान के प्रस्ताव पर अमेरिका सहमत होता नहीं दिखता है। ईरान सरकार के प्रवक्ता इस्माइल बागेई ने कहा है कि ईरान के प्रस्ताव पर अमेरिकी प्रत्युत्तर की समीक्षा की जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की मीडिया से कहा कि ईरान का प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है। आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मुंबई में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज उत्तर भारत में कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: फेसबुक निस्काय व्हाट्सएप इन लाइफ मान मोड काम इतनो आराम सो स्टार्टअप योर डे विथ रेनबो फंडे रेनबो फंडे
2: रेनबो फंडे रेनबो फंडे
1: म्यूजिकल साथ रियल लाइफ बात सिनेमा नाटक भटकन दिखास स्टार्टअप योर डे विथ रेनबो फंडे रेनबो फंडे
2: रेनबो फंडे रेनबो फंडे।
3: आकाशवाणी मुंबई FM रेनबो वाहिनी 107.1 मेगाहर्ट्ज वर रेनबो फंडेचा

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी विधानसभा चुनावों की मतगणना शुरू। 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की भी मतगणना जारी। भारत ने लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति खारिज करते हुए इसे अनुचित बताया। मौसम विभाग ने हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित उत्तर भारत में आज गरज चमक के साथ वर्षा और ओले पड़ने का अनुमान जताया। अमरीका होर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हराया। असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों की मतगणना शुरू हो गई है। सबसे पहले डाक मतपत्र की गिनती की जाएगी। शुरुआती रुझान दोपहर तक मिलने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में सभी मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
1: कुछ घंटों में पश्चिम बंगाल की राजनीतिक किस्मत तय होगी। 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मतगणना सुबह 8 बजे राज्य भर में कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई। 293 निर्वाचन क्षेत्रों के परिणाम दिन भर आने की उम्मीद है, जबकि फलता निर्वाचन क्षेत्र में इस महीने बाद में पुनः मतदान होगा। राज्य भर की 77 मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। स्ट्रांग रूम और मतगणना हॉल में सीसीटीवी निगरानी और बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। चुनाव अभियान और रिकॉर्ड मतदाता भागीदारी के बाद अब सबकी निगाहें आज के फैसले पर है। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: तमिलनाडु में मतगणना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए चलते हैं चेन्नई में हमारे संवाददाता सुशील तिवारी के पास। सुशील, मतगणना के बीच राज्य में सुरक्षा के क्या प्रबंध किए गए हैं?
2: देखिए मुकेश, सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम हैं। 3 स्तरीय जो सुरक्षा व्यवस्था होती है वो पूरी तरह से चाक चौबंद है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है और रूट को डाइवर्ट किया गया है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि तमिलनाडु जो है वो राजनीतिक रूप से बड़ा सक्रिय जो है प्रदेश है, तो बड़ी संख्या में जो राजनीतिक कार्यकर्ता है वो भी जो बाहरी दायरा है उसके आसपास खड़े नजर आ रहे हैं। उनकी उत्कंठा है, उनकी इच्छा है।

0: कि वो जल्दी से जल्दी जान सकें कि उनके राजनीतिक नेता, उनके नेताओं का क्या भविष्य हो रहा है। तो बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचने लगे हैं। हम अभी थोड़ी देर पहले जो है चेन्नई में जो तीन, वैसे तो पूरे राज्य में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन चेन्नई में 3 मतगणना केंद्र हैं, लॉयला कॉलेज, अन्ना यूनिवर्सिटी और क्वीन मैरीज कॉलेज। तो हम क्वीन मैरीज कॉलेज के पास थे, वहां जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम थे, लेकिन ये मरीना बीच के पास है, बड़ी संख्या में राजनीतिक कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंच चुके हैं और लोगों में जबरदस्त उत्कंठा है।
1: जी सुशील, ये भी बताइए कि आज जो मतगणना हो रही है उसमें किन किन प्रमुख उम्मीदवारों की साख दांव पर है?
0: देखिए मुकेश, अगर हम बात करें तो डीएमके का जो सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस है एसपीए, उसके जो नेता है वो एमके स्टालिन, जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री भी, निवर्तमान मुख्यमंत्री जिन्हें कहा जाए, वो कोलाथुर सीट जो कि चेन्नई में ही है वहां से लड़ रहे हैं। तो उनके चुनाव परिणाम पर सबकी निगाहें होंगी। जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं ई पलानीसामी, वो इडापड्डी जो है सेलम डिस्ट्रिक्ट में है, सेलम जिले में है, वहां से लड़ रहे हैं। और केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन जो है वो अविनाशी सीट से लड़ रहे हैं जो कि तिरुपुर में है। इसके अलावा अगर अन्य प्रमुख उम्मीदवारों की बात करें जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वो जोसेफ विजय जो है टीवीके पार्टी के, उनकी टीवीके पार्टी का उनका तमिल वेत्र कड़गम जो पार्टी है, उनके नेता 2 सीटों से लड़ रहे हैं, पेरम्बूर जो कि चेन्नई डिस्ट्रिक्ट में ही है और त्रिची जिले की त्रिची ईस्ट, त्रिची पूर्व की जो सीट है वहां से वो 2 जगह से लड़ रहे हैं। जो डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री है उदय निधि स्टालिन, वो चेपक सीट से लड़ रहे हैं। और एक अन्य महत्वपूर्ण नाम डॉक्टर तमिल ईसाई सौंदर राजन का है, जो कि मैलापुर जो चेन्नई की ही सीट है, ये वर्तमान ये पूर्व में तेलंगाना और पुडुचेरी की राज्यपाल रह चुकी हैं। तो वो भाजपा नेता है, वो इस बार चुनाव लड़ रही है मैलापुर जो चेन्नई की सीट है वहां से। तो ये महत्वपूर्ण लोग हैं जो इस बार चुनाव मैदान में हैं, जिनके नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। मुकेश
1: जी, सुशील, आपका जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए 6 केंद्रों पर मतगणना कड़ी सुरक्षा के बीच जारी है। केंद्र शासित प्रदेश में 294 उम्मीदवारों की राजनीतिक भाग्य का फैसला होना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पहले चरण में सभी 6 मतगणना केंद्रों पर 17 विधानसभा क्षेत्रों के मतों की गिनती की जाएगी। इनमें पुदुचेरी क्षेत्र के 12 निर्वाचन क्षेत्र, कराईकाल के 3 और माहे तथा यानम का 1-1 निर्वाचन क्षेत्र शामिल है। शेष 13 निर्वाचन क्षेत्रों की गिनती दूसरे चरण में की जाएगी। शुरुआती रुझान सुबह लगभग 9:30 बजे तक आने की उम्मीद है। ईवीएम और वीवीपैट की गिनती के लिए कुल 166 टेबल और डाक मतपत्रों के लिए 35 टेबल स्थापित किए गए हैं। मतगणना केंद्रों में कड़ी सुरक्षा और प्रवेश नियंत्रण के उपाय लागू हैं। चुनाव अधिकारियों द्वारा जारी QR कोड आधारित पहचान पत्रों के सत्यापन के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। मतगणना केंद्रों पर मोबाइल फोन जमा करने की व्यवस्था भी की गई है। पुदुचेरी से विभिन्न एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: और असम में मतगणना से जुड़ी जानकारी के लिए रुख करते हैं गुवाहाटी में मौजूद हमारे संवाददाता राकेश डोले से। राकेश जी, राज्य में मतगणना के बीच क्या माहौल देखा जा रहा है?
3: जी, असम में विधानसभा चुनाव के मतगणना कुछ समय पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हो गई है। राज्य में इस बार 85.96% मतदान दर्ज किया है, जो पिछले विधानसभा चुनावों में सबसे अधिक है। राज्य भर में 40 मतगणना केंद्रों पर गिनती की जा रही है। अधिकांश जिलों में जिला मुख्यालय पर 1-1 केंद्र है, जबकि कोकराझार, तिनसुकिया, जोरहाट में 2-2 तथा दोगांव में 3 मतगणना केंद्र है। पूरी प्रक्रिया पर 126 मतगणना प्रेक्षक कड़ी निगरानी रख रहे हैं, जिनकी सहायता के लिए लगभग 6000 मतगणना कर्मी और 2300 से अधिक माइक्रो ऑब्जर्वर्स तैनात किए गए हैं। 126 सदस्य असम विधानसभा के लिए कुल 722 उम्मीदवार मैदान में हैं। सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 64 है। जी
1: राकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उधर केरल में भी कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना जारी है। पश्चिम बंगाल में आज 293 सीटों की मतगणना हो रही है।
4: जनादेश 2026।
1: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
4: आज सुबह 8:30 बजे से
1: मतगणना की पल पल की खबर,
4: हर सीट की सटीक जानकारी,
1: संवाददाताओं से ताजा हाल
4: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण,
1: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
4: जनादेश 2026।
1: पांच राज्यों की 7 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनावों की मतगणना भी शुरू हो गई है। ये 7 सीट गुजरात में उमरेठ, कर्नाटक में बागलकोट और दावणगेरे, दक्षिण महाराष्ट्र में राहुरी और बारामती, नागालैंड में कुरीडांग और त्रिपुरा में धर्मनगर हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने लिपलेख दर्रे पर नेपाल के दावे को खारिज कर दिया है। भारत ने कहा है कि दर्रा वर्ष 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का मार्ग है और दशकों से इस मार्ग से यात्रा जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संदर्भ में नेपाल के विदेश मंत्रालय के सीमा संबंधी दावों के बारे में ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि संबंध में भारत का रुख स्पष्ट है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे दावे न तो न्यायसंगत हैं और न ही ऐतिहासिक तथ्यों तथा सबूतों पर आधारित हैं। प्रवक्ता ने कहा कि भारत द्विपक्षीय संबंधों के सभी मुद्दों पर नेपाल के साथ सार्थक बातचीत के लिए तैयार है। होर्मुज में फंसे जहाजों के लिए अमेरिका प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस परियोजना से सैकड़ों जहाजों और लगभग 20,000 नाविकों को सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध से तटस्थ देश प्रभावित हुए हैं और अमेरिका इन देशों के जहाजों को प्रतिबंधित जल क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकालने में सहयोग करेगा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के अनुसार इसके लिए मिसाइल नाशकों, 100 से अधिक विमानों और 15,000 कर्मियों को तैनात किया जाएगा। श्री ट्रंप ने कहा कि इस प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने वालों के लिए सख्ती से निपटा जाएगा। फरवरी में युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान ने होर्मुज से जहाजों की आवाजाही लगभग बंद कर रखी है। उधर अमरीका ने भी ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी कर दी है। इस बीच पश्चिम एशिया में संघर्ष विराम को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। समझौते के लिए ईरान के प्रस्ताव पर अमेरिका सहमत नहीं है। ईरान के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने कहा कि ईरान के प्रस्ताव पर अमेरिकी जवाब की समीक्षा की जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान का प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है। एक रिपोर्ट।
5: ईरान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि वो अपने 14 सूत्री प्रस्ताव पर अमेरिका की प्रतिक्रिया की समीक्षा कर रहा है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि योजना का उद्देश्य शत्रुता को समाप्त करना है और इसमें परमाणु मुद्दों का कोई जिक्र नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान परमाणु प्रतिबंधों से संबंधित मांगों को पूरा नहीं करता। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल और हिजबुल्ला के बीच युद्ध विराम के बावजूद लड़ाई तेज हो गई है और इसराइली सेना ने हाल के दिनों में हिजबुल्ला से जुड़े दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया है। इस बीच हिजबुल्ला भी इसराइली सैनिकों पर रॉकेट और ड्रोन से हमले जारी रखे हुए है। उधर मध्यस्थों के माध्यम से राजनयिक प्रयास भी जारी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमन।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रक्षा त्रिवेणी संगम विषय पर 3 दिन की उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि संगोष्ठी परिचालन संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीक के प्रदर्शन और एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण मंच है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज गरज चमक के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में भी ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। बिहार, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल में भी कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। आईपीएल क्रिकेट में कल गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मुंबई में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
6: धन्यवाद मुकेश। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की मतगणना की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, नतीजे आज, निगाहें बंगाल पर। पत्र के अनुसार मतदान केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, देश की राजनीतिक दिशा तय करेंगे तमिलनाडु बंगाल के चुनाव परिणाम। पत्र के अनुसार जनादेश आज, 5 प्रदेशों में दलों की धड़कने तेज। हिन्दुस्तान ने फलता में पुनर्मतदान शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, निर्वाचन आयोग के के इस निर्णय की अनुगूंज पूरे देश में पहुंचनी चाहिए कि बाहुबल के सहारे मतदाताओं को डराने और मतदान को बाधित करने का क्या नतीजा हो सकता है। दिल्ली में एसी से लगी आग में 9 लोगों की मौत पर हिंदुस्तान का शीर्षक है, एसी बना काल, 9 को लील गया। नव भारत टाइम्स के अनुसार बुजुर्ग पेरेंट्स को बचाने अंदर दोबारा गई फिर लौट न सकी। दैनिक जागरण ने आग का सिलसिला शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, गर्मियां बढ़ते ही घरों, कारखानों

0: और अन्य स्थलों पर आग लगने की घटनाओं का सिलसिला तेज होना इसलिए चिंताजनक है क्योंकि अभी तो तापमान और ज्यादा बढ़ने के आसार हैं। इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि आग लगने की ज्यादातर घटनाएं एसी में ब्लास्ट या शॉर्ट सर्किट के कारण हो रही है। राजस्थान पत्रिका ने नया सवेरा शीर्षक से लिखा है, जब आक्रोश बन गया राष्ट्र संकल्प तो आतंक पर फिर हुआ निर्णायक प्रहार। पहली बार तैनात हुई ऑल वुमन कॉम्बैट टीम ने मोर्चे पर दिखाया जोश, दुनिया को बताया अब और नहीं, ऑपरेशन के बाद सामने आई शौर्य गाथाएं। पंजाब केसरी की सुर्खी है, लिपुलेख पर भारत की नेपाल को दो टूक। पत्र के अनुसार विदेश मंत्रालय ने नेपाल के दावों को खारिज करते हुए एक तरफा और अनुचित बताया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब हर तरह के मौसम में धरती के कोने कोने पर भारत रख सकेगा दृष्टि। दुनिया का पहला ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि कैलिफोर्निया से हुआ लॉन्च। चीन पाक सहित हर देश की छोटी बड़ी गतिविधि की होगी निगरानी। देशबंधु के अनुसार विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर बोले संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव अंतोनियो गुतरश, तमाम तरह की स्वतंत्रता प्रेस की आजादी पर टिकी, इसके बिना ना तो मानवाधिकार संभव है ना ही शांति, पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा करने का आह्वान किया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, असम, पश्चिम केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी विधानसभा चुनावों की मतगणना शुरू, 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनावों की भी मतगणना जारी। भारत ने लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति खारिज करते हुए इसे अनुचित बताया। मौसम विभाग ने हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित उत्तर भारत में आज गरज चमक के साथ वर्षा और ओले पड़ने का अनुमान जताया। अमरीका होर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। काउंटिंग ऑफ वोट्स बिगिन फॉर असेंबली इलेक्शंस इन असम, वेस्ट बंगाल, केरलम, तमिलनाडु एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी। काउंटिंग ऑफ वोट्स ऑल्सो अंडर वे फॉर बाईपोल्स इन 7 असेंबली कंस्टिट्युएंसीज। India rejects Nepal's objection to Kailash Mansarovar Yatra through Lipulekh Pass, calls it unjustified. IMD forecasts thunderstorms accompanied with hailstorm over North India, including Haryana, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh and Uttarakhand today. United States to launch Project Freedom to guide stranded ships safely out of Strait of Hormuz. And in IPL cricket, Gujarat Titans defeat Punjab Kings by 4 wickets in Ahmedabad last night. And now the news in detail. Counting of votes began for the assembly elections in Assam, West Bengal, Keralam, Tamil Nadu and Union Territory of Puducherry this morning. Counting began at 8 a.m. with postal ballots taken up first, which will be followed by electronic voting machines or EVMs. Early trends are expected to emerge by noon. The Election Commission has made elaborate arrangements to ensure peaceful and transparent counting. Counting of votes is being conducted for 293 seats in West Bengal, 126 assembly seats in Assam, 140 in Keralam, 234 in Tamil Nadu and 30 seats in Puducherry. Now we go over live to our correspondent Kalyan Laha in Kolkata for the latest update on counting. Kalyan, how is counting progressing in West Bengal?
3: At this moment, the postal ballot is being counted. And after the completion of postal ballot, the EVM counting will start. And the Election Commission has taken all the arrangements to conduct a free, fair and a peaceful counting. And three-layer security arrangement has been established at all the counting centers, and there are 77 counting centers in the states. And one thing I should mention that today 293 assemblies, constituencies counting is being held, and Election Commission has ordered recall in Falta assembly constituency. on that will be held on 21st May, and

गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जोशीले जोश भरे इस गीत के साथ हमने की है आज सुबह मंडे की शुरुआत, क्योंकि भाई मंडे को अक्सर जो है ना ऑफिस जाने का दिल करता है, ना स्कूल जाने का दिल करता है, ना ही कुछ और करने का दिल करता है। तो हमने सोचा चलिए एक धमाकेदार शुरुआत कर देते हैं यहीं 107.1 FM रेनबो पर आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। मैं हूँ ममता सहगल आपके साथ, और मस्त मुंबई में आज मुंबई के मस्ताने आपको बताने वाले हैं कि क्या हुआ था इतिहास में आज के दिन, भाई क्या क्या खास है और क्यों है खास आज का दिन। तो बने रहिए हमारे साथ, मैं हूं ममता सहगल आपके साथ हर कदम।

क्या बात है, कुछ मिक्स जंबल आपको गाने सुनवा रही हूँ, कुछ जोश और मस्ती के भरे हुए, कुछ आपको सोचने पे मजबूर कर दे और कुछ एक अलग ही मूड के गाने हैं। आपको ये बता दूं कि आप हैं मेरे साथ 107.1 FM रेनबो पर आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। मैं हूँ ममता सहगल, आपके साथ साथ लेकर कार्यक्रम मस्त मुंबई, मुंबई के मस्ताने। और आपको ये बता दूं कि आज ही के दिन साल 1854 में भारत की पहली डाक टिकट को औपचारिक तौर पर जारी किया गया था। आज का दिन कई मायनों में बहुत बहुत खास है। क्या क्या है आज के दिन की खासियत बताऊंगी आपको, लेकिन फिलहाल

तो भाई सुनिए तो सही, आज के दिन में क्या है खास। बहुत सारी बातें हैं आज के दिन को जो बनाती हैं खास। आज ही के दिन साल 1896 में लंदन डेली मेल का पहला संस्करण प्रकाशित किया गया था, और आज ही के दिन साल 1924 में पेरिस में आज के ओलंपिक खेलों की शुरुआत भी हुई थी। आज ही के दिन बहुत कुछ होता है खास। क्या है ये सारी बातें बताएंगे आपको, बने रहिए हमारे साथ 107.1 FM रेनबो पर आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। मैं हूं ममता सहगल आपके साथ लेकर कार्यक्रम मस्त मुंबई।

भाई पानी ब्लू है कि नहीं पता नहीं, लेकिन पानी को बचाना बहुत जरूरी है। गर्मी बहुत भयंकर पड़ रही है और ऐसे में जो है पानी की किल्लत हो सकती है जब तक बारिश ना आए। तो सभी तमाम लोगों से मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज प्लीज प्लीज जरा पानी को सोच समझ के इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही सावधानी से इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जल ही जीवन है। वैसे आपको बता दूं कि आज ही के दिन 1980 में कोल माइंस डे के तौर पर मनाने की आज के दिन को घोषणा की गई थी। और यही नहीं, 1927 में आज ही के दिन अमेरिका में फिल्म कला एकेडमी, मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एकेडमी की स्थापना की गई थी, जिसने ऑस्कर प्राइजेस जो है ऑस्कर देने शुरू किए थे। 1945 में जो है एक जंग चल रही थी, जहां पर जर्मनी की सेना ने नीदरलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे में आत्मसमर्पण किया था। और संगीत की दुनिया से जुड़ी भी एक खबर है जो आज के दिन को बेहद खास बनाती है। क्या है वो बताऊंगी आपको, बने रहिए हमारे साथ।

0: से मेरे उफ।
1: तो भाई आपके दिल ने क्या कहना शुरू कर दिया भाई, हमें इतने सारे मैसेजेस में आपके दिल की बात पहुंच रही है। रजनीकांत पाटिल जी, थैंक यू सो मच, आपको भी सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। प्रणव शिंदे जी, थैंक यू सो मच, और इनका कहना है कि मुंबई में बादल छाए हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि बारिश कभी भी हो सकती है। चलिए बारिश हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे बारिश के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। विजेंद्र घटोल जी ने हमें अंकोला से मैसेज किया है, गाने पसंद आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। दीपा पालकर जी ने हमें मैसेज किया है, और जिस टॉपिक का आपने जिक्र किया है हम उसके बारे में भी बात करने वाले हैं, लेकिन अगले घंटे में, तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। बाबा दादर जी, थैंक यू सो मच। पंकज मोहर जी, आपको कार्यक्रम पसंद आ रहा है, थैंक यू सो मच। दत्तात्रेय आदत बेलापुर से गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, थैंक यू सो मच। अंजू जी अंधेरी से, और इन्हें कार्यक्रम पसंद आ रहा है, थैंक यू सो मच। फिरोज सिगनपुरिया जी ने हमें ग्रीटिंग्स भेजे हैं, थैंक यू सो मच। शुभलक्ष्मी मस्कर जी ने ग्रीटिंग्स भेजे हैं, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। विक्रम आठवले जी ने हमें भेजे हैं गुड मॉर्निंग मैसेजेस, थैंक यू सो मच। शुभदा जी ने हमें गुड मॉर्निंग कहा है। तो हमारे तमाम जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, आर एन सोमवंशी जी, आप सबको बहुत बहुत बहुत बहुत अच्छे वाली गुड मॉर्निंग। महेश भाटकर जी सैंटा क्रूज से, आपको भी गुड मॉर्निंग। आपने सबने हमें जो गुड मॉर्निंग मैसेजेस भेजे हैं, फूलों के गुलदस्ते भेजे हैं, और अच्छे अच्छे क्यूट क्यूट मैसेजेस भेजे हैं, आप सभी को थैंक यू सो मच। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार बातें बेशुमार, बने रहिए हमारे साथ।

भाई आज ही के दिन 1959 में ग्रैमी अवार्ड्स की शुरुआत हुई थी और इसकी शुरुआत से पहले फिल्म और टेलीविजन में काम करने वाले कलाकारों को एकेडमी और एमी जैसे प्रतिष्ठित अवार्ड्स दिए जाते थे, लेकिन संगीत के लिए कोई पुरस्कार ही नहीं था। संगीत कलाकारों के उचित सम्मान और लोगों की बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए ग्रैमी की शुरुआत की गई 1959 में। इसके पहले अवार्ड शो का आयोजन किया गया। जानते हैं कि 75 से ज्यादा अवार्ड दिए जाते थे उस वक्त। जी हाँ, 1959 में अमेरिका के लॉस एंजलिस में पहली बार इसका आयोजन किया गया और पहली बार में 28 ग्रामी अवार्ड्स दिए गए थे और उसके बाद इसे ग्रामोफोन अवार्ड्स कहा जाता था। अवार्ड में दी जाने वाली ट्रॉफी का जो आकार होता था वो ग्रामोफोन की तरह होता था और तब से हर साल संगीत की 25 से ज़्यादा श्रेणियों के लिए कुल 75 से ज़्यादा अवार्ड्स दिए जाते हैं। और हमारे कई भारतीय संगीतकार ऐसे हैं, संगीत की दुनिया से जुड़े ऐसे लोग हैं जिन्हें इस खिताब से सम्मानित किया गया है। उनके बारे में आपको बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ।

भाई मीटर डाउन तो हमारा हो चुका है एंटरटेनमेंट का, क्योंकि हम हमेशा मीटर डाउन रखते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि एंटरटेनमेंट होता है फुल ऑन यही 107.1 FM रेनबो पर आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। मैं हूं ममता सहगल आपके साथ, और आपको मैं बताती हूं कि कौन कौन से ऐसे भारतीय हैं जिन्हें इस अवार्ड के साथ नवाजा गया है। सितार वादक पंडित रविशंकर जी, इन्हें मिला था 1968 में, उन्हें उनकी एल्बम वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए ये दिया गया था। उनके पास 5 ग्रामी अवार्ड है जिनमें से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी शामिल है। इसके अलावा तबला वादक जाकिर हुसैन साहब, AR रहमान साहब, जुबिन मेहता, पंडित विश्व मोहन भट्ट, शंकर महादेवन के बैंड शक्ति को भी ये अवार्ड मिल चुका है। तो भाई बहुत प्रेस्टीजियस अवार्ड इसे माना जाता है, और भारत ने भी अच्छा नाम रोशन किया है इन अवार्ड्स की लिस्ट में। वैसे आपको मैं ये बता दूं कि आज ही के दिन 1975 में द किड एंड द ग्रेट डिटेक्टर जैसी जो मूक फिल्म थी, उनके स्टार जो थे चार्ली चैपलिन, उनको बंकिंघम पैलेस में नाइट की उपाधि भी दी गई थी आज ही के दिन। भाई चार्ली चैपलिन को हम लोग कैसे भूल सकते हैं, हमारा तो बचपन बीता है उनकी ही सब फिल्में देखते हुए, उनकी सब हरकतें देखते हुए, और यहाँ तक कि बच्चे तो फैंसी ड्रेस में आज तक कई जगह पे चार्ली चैपलिन बनकर आते हैं। भाई क्या बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सुनवाते हैं आपको खूबसूरत सा गीत, और ये बता दें आपको कि 10 बजे होंगे समाचार हमारे मुंबई केंद्र से। समाचार के इस बार नमस्ते भारत में मैं लाई हूँ आपके लिए कुछ खास, बने रहिए हमारे साथ।

आप सुनेंगे इस घंटे का आखिरी गीत। गीत के उस पार होंगे समाचार, समाचारों के उस पार मेरी और आपकी फिर से नमस्ते भारत में मुलाकात। तब तक बने रहिए हमारे साथ 107.1 FM रेनबो पर आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, 107.1 एफएम रेनबो आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। सुबह के ठीक 10 बज चुके हैं। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के समाचारों की सुर्खियों पर। असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना शुरू हो गई है। सबसे पहले डाक मतपत्र की गिनती की जाएगी। शुरुआती रुझान दोपहर तक मिलने का अनुमान है। वहीं महाराष्ट्र के बारामती और राहुरी सहित कुल 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों की मतगणना भी शुरू हो गई है। भारत ने लिपुलेख दर्रे पर नेपाल के दावे को खारिज कर दिया है। भारत ने कहा कि यह दर्रा वर्ष 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का मार्ग है और दशकों से इस मार्ग से यात्रा जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संदर्भ में नेपाल के विदेश मंत्रालय के सीमा संबंधी दावों के बारे में यह टिप्पणी की। समाचारों में आगे है, पश्चिम एशिया में संघर्ष विराम को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। समझौते के लिए ईरान के प्रस्ताव पर अमेरिका सहमत होता नहीं दिखता है। ईरान सरकार के प्रवक्ता इस्माइल बागोई ने कहा है कि ईरान के प्रस्ताव पर अमेरिकी प्रत्युत्तर की समीक्षा की जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की मीडिया से कहा कि ईरान का प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है। समाचारों के अंत में खेल जगत से समाचार। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आज मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स आमने सामने होंगे। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। आप बने रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो की मुंबई प्रसारण सेवा के साथ।

ना तो आपको सैड होने की जरूरत है, ना ही बैड होने की और ना ही मैड होने की, क्योंकि आपके एंटरटेनमेंट का फुल डोज लेकर हम हाजिर हो गए हैं यहाँ पर। सुबह के 10:07 हो चुके हैं सात और 107.1 FM रेनबो आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। मैं हूँ ममता सहगल आपके साथ लेकर कार्यक्रम नमस्ते भारत। और आज नमस्ते भारत में है प्रीत, जहाँ की रीत सदा। इस टॉपिक के अंतर्गत हम जो है आज कुछ ऐसे त्योहारों की बात करने वाले हैं जो शायद आप में से कई लोगों को पता भी ना हो, शायद आप लोग मनाते ना हो, या पता हो लेकिन उसका जो कारण होता है वो ना पता हो। तो भाई भारत में हर त्योहार चाहे छोटा हो या बड़ा हो,

में एक बार आता हो या हर महीने अलग अलग नाम से आता हो, अलग अलग बार से आता हो, कभी किसी नाम से आता हो, कभी किसी नाम से आता हो, उसे बड़ी ही श्रद्धा और प्रेम से मनाया जाता है। वैसे देखा जाए तो त्यौहार खुशियों का संदेश लाते हैं, और अगर आप हर रोज खुश रहते हैं तो समझिए कि हर दिन ही एक त्यौहार बन जाता है। तो आइए आज आपको इस महीने दो छोटे छोटे त्यौहार छुपे हैं, दो ऐसे त्यौहार हैं जिनके पीछे एक मान्यता छुपी है, आपको मैं उस मान्यता के बारे में बताऊंगी। लेकिन फिलहाल वक्त एक खूबसूरत से गीत का, गीत के उस पार बातें बेशुमार, बने रहिए हमारे साथ।

भाई मई का महीना शुरू हो गया है और कुछ कुछ अपने साथ ये धार्मिक रंग भी लेकर आया है, क्योंकि इस बार की जो शुरुआत है वो ही समाप्ति पूर्णिमा से हुई थी। इस पूरे महीने में गंगा दशहरा, वट सावित्री का व्रत और बड़ा मंगल जैसे खास पर्व आने वाले हैं। अब हमने अक्सर इन नामों को बहुत बार सुना है, लेकिन इन नामों से जुड़ी या इन त्योहारों से जुड़ी क्या मान्यता होती है ये कई बार होता है कि हमें नहीं पता होता है। तो बस ऐसी छोटी सी बात आपको मैं आज यहाँ बताने वाली हूँ। दरअसल इसी महीने ज्येष्ठ मास की जो है शुरुआत हो जाती है, यानी कि ज्येष्ठ मतलब कि बड़े महीने की शुरुआत हो जाती है। हमारे हिंदू कैलेंडर को जो है अलग अलग महीनों में इस तरह से फागुन, बसंत, ज्येष्ठ इन सब में बांटा गया है। तो वैसे ही ज्येष्ठ मास की शुरुआत जो है वो मई के महीने से हो जाती है और इस दौरान आने वाले हर मंगलवार को कहा जाता है बड़ा मंगल। मान्यता ये है कि इस दिन हनुमान जी की मुलाकात भगवान श्री राम से हुई थी और इसलिए इस महीने आने वाले हर मंगलवार को कहा जाता है बड़ा मंगल। तो अब आपको पता ही है कि मंगलवार कौन सी तारीख को आ रहे हैं, तो वो जितने भी मंगलवार होंगे ऐसा कहा जाता है, मान्यता है कि इस दिन जो है बड़े मंगल के दिन ही हनुमान जी की जो है मुलाकात हुई थी, वो हुई थी भगवान श्री राम जी से।

अब कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने बात की थी गंगा दशहरे के बारे में, तो आई एम श्योर हो सकता है कि आपने इसका नाम सुना हो, लेकिन क्या है इस गंगा दशहरे की जो मान्यता है, क्या है ये कहानी, वो मैं आपको बताती हूँ। कहते हैं कि इसी दिन माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी, इसलिए इस दिन का बहुत महत्व माना जाता है। तो इस महीने वो गंगा दशहरा भी आने वाला है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये गंगा दशहरा जो है वो 25 मई को मनाया जाएगा, और इस पर्व पर गंगा स्नान और दान देने से कहते हैं कि आपको 10 प्रकार के पापों से मुक्ति भी मिल जाती है। तो बस फिर भगवान का ध्यान कीजिए, आप दिल से बस एक बार अगर भगवान को याद कर लेते हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी में जो है किसी तरह की दिक्कतें नहीं आती हैं, क्योंकि वो आपको नज़र भले ही ना आए लेकिन मुसीबतों से आपको जो पार कराते हैं ना, वो वही होते हैं। और हमेशा कहते तो हैं कि बुरा टाइम जो है वो ज़्यादा देर रुकता नहीं है, क्योंकि भगवान आपको जो है सही टाइम पर जो है बाहर निकाल लेते हैं। तो बस भजन भक्ति में खोए रहिए और अच्छे अच्छे काम कीजिए, अच्छे अच्छे बातें कीजिए, और जहाँ तक हो सके लोगों की मदद कीजिए। वैसे आज एक और बहुत ख़ास दिन है, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी, लेकिन फ़िलहाल वक्त है एक खूबसूरत से गीत का। और ये जो गीत है आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों ने शायद ना सुना हो, तो मुझे बताइएगा कि कितने टाइम बाद आप ये गाना सुन रहे हैं।

तो ये जो गाना था वो आपने सुना फिल्म सुरक्षा से उदित नारायण, अभिजीत और अलीशा चिन्नाय की आवाजों में, जिसे लिखा था फैज अनवर साहब ने और कंपोज किया था ऑफकोर्स नाना ददान अनु मलिक जी ने। और बहुत ही सारे लोगों के मैसेजेस आए हैं जिनमें से पंकज मोहर जी हमें लिखते हैं कि ये गाना ये पहली बार सुन रहे हैं आज। क्या बात है भाई, मतलब मैं ऐसे चुनकर लेकर आ सकती हूँ गाने मतलब आपके लिए जो आपने शायद नहीं सुने हों। चलिए ऐसा भी कुछ ना कुछ करेंगे ज़रूर। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये बताऊँ कि आज क्या है ख़ास। तो भाई आज है इंटरनेशनल फायर फाइटर डे। साल में ये एक दिन है जो 4 मई का दिन है, जिसे पूरे विश्व में फायर फाइटर दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका मकसद सिर्फ इतना सा है कि फायर फाइटरों को उनके मुश्किल भरे काम के लिए धन्यवाद दें और उनका सम्मान करें। फायर फाइटर दिन जो है वो पहली बार 1999 में मनाया गया था, जब ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया स्थित लिंटन की झाड़ियों में आग लगी थी और आग को बुझाने पहुंची टीम के 5 सदस्यों की विपरीत दिशा से हवा आने की वजह से आग में झुलसकर मृत्यु हो गई थी। मौसम विभाग की तरफ से हवा की विपरीत दिशा में बहने की कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई थी,

लेकिन अचानक से हवा ने अपनी दिशा बदल दी, क्योंकि ऑफ कोर्स है मौसम है, एनवायरनमेंट है, हम नहीं कह सकते कि कब क्या हो जाए। तो भले ही साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर जो है प्रकृति अपना रंग दिखा ही देती है। तो भाई अचानक से वो जो हवा थी उसने अपनी दिशा बदली और उसकी वजह से 5 फायर फाइटर आग की चपेट में आ गए। उन्हीं फाइटर्स की याद और सम्मान में हर साल 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस यानी कि इंटरनेशनल फायर फाइटर डे मनाया जाता है। तो आज हम भी हमारे इस माध्यम के जरिए उन तमाम फायर फाइटर्स को दिल से जो है सैल्यूट करना चाहेंगे, दिल से शुक्रिया करना चाहेंगे, जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए ऐसी स्थितियों में जहां पर कि आग लग जाए या किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, अपनी जान की परवाह ना करते हुए हमारे लिए अपनी जान दांव पर लगाने के लिए हर वक्त अटल रहते हैं, हर वक्त तैयार रहते हैं। ऐसे महान फायर फाइटर्स को हमारी तरफ से दिल से सलाम।

बिल्कुल, हमारे तमाम लिसनर्स के जैसा भी कोई नहीं जो सुबह सुबह हमारे साथ जुड़ जाते हैं और हमारा इतना उत्साह बढ़ाते हैं, हर वक्त हमें सिर्फ आगे ही आगे बढ़ने का हौसला देते हैं, इनकरेजमेंट देते हैं। सो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। श्रेय राउत जी, प्रमोद चिंचोलकर जी, विजेंद्र घटोल जी, पंकज मोहट जी, बाबा दादा जी, सुरेश काशीनाथ पाटिल जी, अंकित जी, शुभलक्ष्मी मस्कर जी, रजनीकांत पाटिल वाधवन जी, दीपा पालकर जी, महेश भाटकर सैंटाक्रूज से, अजय सखारे जी, प्रमोद खरखनीस जी, इनका नाम नहीं है, हाँ अयूब टेलर जी, दत्तात्रेय आदत बेलापुर से, अंजू जी अंधेरी से, फिरोज सिकनपुरिया जी, विक्रम आठवले जी, शुभदा जी, आर्यन सोमवंशी जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने प्यार भरे मैसेजेस भेजकर हमें सुबह सुबह गुड मॉर्निंग कहने के लिए। थैंक यू सो मच। फिलहाल तो चाहती हूँ आपसे इजाज़त, क्योंकि निखिल आ चुके हैं यहाँ पर लेकर कार्यक्रम ब्रेक फ्री, और आज वो किस बात से आपको ब्रेक फ्री करने वाले हैं वो तो खैर वही आएंगे, क्योंकि सरप्राइज पर तो हर कोई जो है खुश हो जाता है, तो वो ऐसा क्या सरप्राइज आपके लिए लेकर आए हैं तो वो आपको जानने के लिए बस थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको छोड़े जा रही हूँ राहत फतेह अली खान साहब की एक खूबसूरत गीत के साथ, और गीत के उस पार होंगे समाचार, समाचारों के उस पार निखिल और आपका साथ, जहां होंगी बातें और गीत बेशुमार। हमारी और आपकी अगली मुलाकात तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी एक गीत है इसे गुनगुनाते रहिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, आइए सुनते हैं अभी के ताजा समाचार। देश के विभिन्न राज्यों में विधानसभा चुनावों की मतगणना के बीच शुरुआती रुझान सामने आने लगे हैं। पश्चिम बंगाल में 294 में से 65 सीटों के रुझानों में भाजपा 42 सीटों के साथ आगे है, जबकि टीएमसी 22 सीटों पर पीछे चल रही है। तमिलनाडु में 234 में से 160 सीटों के रुझानों में तमिल वेत्री कड़ंगम 68 सीटों पर आगे है, जबकि AIADMK 51 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर है। केरल में 140 में से 136 सीटों के रुझानों में कांग्रेस 50 सीटों पर आगे है, जबकि CPM 31 सीटों के साथ मुकाबले में बनी हुई है। असम में 126 में से 105 सीटों के रुझानों में भाजपा 66 सीटों के साथ बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस 18 सीटों पर पीछे चल रही है। बारामती और राहुरी विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना जारी है, जहां बारामती से उप मुख्यमंत्री और भाजपा की उम्मीदवार सुनेत्रा पवार और राहुरी से भाजपा के अक्षय करडिले अपने प्रतिद्वंदियों से बढ़त बनाए हुए हैं। समाचार में आगे, बिहार में आज सुबह रोहतास जिले में एक सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हुए हैं। दुर्घटना उस समय हुई जब तिलक समारोह से लौटते समय बस से उतर रहे लोगों को एक तेज रफ्तार वाहन से कुचल दिया। समाचार के अंत में, बंगलुरु स्थित स्टार्टअप गैलेक्सी स्पेस ने आज स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट से अपने उपग्रह मिशन दृष्टि का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया, जिससे भारत की

निजी क्षेत्र ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। यह मिशन वैश्विक प्रक्षेपण मंच पर भारत के उन्नत स्वदेशी नवाचार का प्रदर्शन करता है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। सुनते रहिए आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल, म्यूजिकली योर्स।

नमो नमः, सुस्वागतम स्वागतम ब्रेक फ्री कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, हिंदुस्तान के साथ नाचने हिंदुस्तान के साथ गाने आ गया है डॉक्टर निखिल शासनी। तो दोस्तों, कैसे हो, कैसे हालचाल, क्या चल रहा है? फिलहाल तो मेरे मन में सिर्फ मेट्रो ही मेट्रो चल रहा है। मेट्रो से सफ़र करना ही एक ब्रेक फ्री होने का ज़रिया जब भी समय मिलता है तो ये एक फॉर्मूला बन गया है। तो आपका क्या चल रहा है मुझे बताइए। यही आप ही के FM रेनबो चैनल पर जो है म्यूजिकली योर्स। हमारा व्हाट्सएप नंबर तो आपको पता ही है, 8657661071।

0: या अज्ञात कथा आकाशवाणीच्या रेनबो आणि अस्मिता वाहिनीवर या दोन्ही ठिकाणी आपल्याला ऐकता येणार आहे. त्यामुळे जोडलेले राहा. भेटूच
1: लवकरच.
2: यस, व्हेरी गुड मॉर्निंग. आप सभी का हार्दिक स्वागत है ब्रेक फ्री कार्यक्रम में. राकेश माथुर कहिए, वरी से अशोक पाटिल कहिए, और इंदौर से हमारे दोस्त अजय साथरे. शुभदा कैसे हो, और अकोला से विजेंद्र घाटोल, फिरोज सिंगनपुरिया, आप सभी का हार्दिक स्वागत है. और पंकज मोहड़ जी, हितेंद्र दास जी, आपका भी स्वागत है, और आप सभी श्रोताओं का स्वागत है. सभी दोस्तों की महफिल जम चुकी है और साथ में हम ब्रेक फ्री हो रहे हैं. और जी हाँ, थोड़ी सी गर्मी भी लग रही है, थोड़ा सा चिपचिपापन भी लगता है जब हम ट्रैवल करके जाते हैं. तो क्या करते हैं आप, मतलब मैंने मेट्रो का जिक्र किया तो हमारे जो दोस्त है आयास, उन्होंने भी कहा, उन्होंने भी रिसेंटली मेट्रो का सफ़र किया तो बहुत ठंडा ठंडा लगा. तो जी हाँ, गर्मी से कैसे आप ब्रेक फ्री होते हो और कैसे धूम मचाते हो, मुझे बताइए. यही FM रेनबो चैनल पर.

जी हाँ, धूम मचा रहे हमारे दोस्त। जी हाँ, हमारी जो दोस्त है शुभदा, वो लिखती है कि उन्होंने ही अभी रिसेंटली मिसिंग लिंक से ट्रैवल किया। जी हाँ, जो मुंबई पुणे के दौरान एक्सप्रेसवे से नया अभी इनॉग्रेट हुआ है, तो उसे ट्रैवल किया। बहुत ही खूबसूरत ऐसा एक्सपीरियंस रहा, तो हमें भी वो सजेस्ट कर रहे हैं कि जी हाँ, ट्रैवल प्लान बनाना है और मिसिंग लिंक, जिसे कनेक्टिंग लिंक कहने के लिए हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री साहब हैं, उन्होंने कहा है, तो बहुत बढ़िया। तो जी हाँ, ऐसे एक दूसरे से प्रेरणा लेते हैं और ट्रैवलिंग प्लान बनाते हैं, ट्रैवल प्लान बनाते हैं। और अभी ये गर्मी से कैसे ब्रेक फ्री किया जाए खुद को, तो बताइए जल्दी जल्दी। एक दो सजेशन आए हैं, पर आपके मैसेज का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि जब आपका मैसेज आएगा तभी तो मौजा ही मौजा होगा। थैंक यू शुभदा।

0: या अज्ञात कथा आकाशवाणीच्या रेनबो आणि अस्मिता वाहिनीवर या दोन्ही ठिकाणी आपल्याला ऐकता येणार आहे. त्यामुळे जोडलेले राहा, भेटूच
1: लवकरच.
2: थैंक यू राकेश माथुर और विजेंद्र घाटोल. थोड़े से वो सरप्राइज़ हो गए. हमेशा मैं इवनिंग शोज़ में यानी हमारे जो 5 से 8 का सेगमेंट होता है तो उसमें आता हूँ, तो आज थोड़ा सरप्राइज़ देने का मेरा मन था, तो सुबह के शो में यानी 11 से 2 में आपसे मुलाकात करने चला आया. जी हाँ, और गर्मी से ब्रेक फ्री होने के जो आपके संदेश मिल रहे हैं मुझे, उस पर भी चर्चा करेंगे. पहले क्यों ना आपको 4 ऑप्शन दिए जाए. ऑप्शन ए कि एक्स्ट्रा कपड़े कैरी करके आप आपके कार्यालय में ऑफिस में जाते हैं. ऑप्शन बी गांव भाग जाते हैं. ऑप्शन सी घर से बाहर ही नहीं निकलते. ऑप्शन डी ए बी सी, ये तीनों जोड़ के काम जारी रहता है. तो आपका कौन सा जवाब है, तो सोचो कुछ और बताओ.

सुरेश काशीनाथ पाटिल और अविनाश दामोदर कड़ू, सुप्रभात जी। हाँ, आप सभी के संदेश मुझ तक यानी FM रेनबो चैनल तक पहुंच रहे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसे जवाब आप दे रहे हो। जी हाँ, मैंने आपको ऑप्शन दिया था कि गर्मी से कैसे ब्रेकफी करते हैं आप। तो ऑप्शन ए था एक्स्ट्रा कपड़े की जोड़ी लेके ऑफिस जाते हो, ऑप्शन बी गांव भाग जाते हो, ऑप्शन सी घर पे ही बैठे रहते हो, बाहर निकलना टालते हो, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबो। तो हमारे ज़्यादातर मतलब FM रेनबो मुंबई के सर्वे के अनुसार यानी हमारे जो दोस्त हैं उनके सर्वे के हिसाब से ज़्यादातर हमारे दोस्त ऑप्शन सी को पसंद कर रहे, घर से ही बाहर

कुंगनपुरिया उन्होंने अभी अभी कलिंगड़ बाजार से लेके आ रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। जी हाँ, बहुत मज़ा आ रहा है। हमारी जो डॉक्टर साहिबा है, डॉक्टर अंजू अंधेरी, इससे वो लिखती हैं, अपना ख्याल रखती हैं कैसे कि कैप पहनना और गॉगल पहनना और खुद का हाइड्रेट रखना। और भी कई सारे संदेश है। शुभलक्ष्मी मस्तकर, इन्होंने ऑप्शन ए और सी, सॉरी ऑप्शन ए सी नहीं, एसी के बारे में लिखा है। जी हाँ, एयर कंडीशन में बैठे हैं और ज़्यादा बाहर नहीं निकल रहे हैं। और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग जवाब हैं, तो पहले सुनते हैं अगला गीत और एक दूसरे को ताली देते हैं। बहुत ही अच्छे ब्रेक फ्री के आइडियाज़ हम तक पहुंच रहे हैं।

प्रणव शिंदे लिखते हैं कि वो गर्मी एंजॉय कर रहे हैं, और हमारे जो दोस्त हैं पंकज मोहड़ वो लिखते हैं कि वो सुबह सुबह जल्दी उठते हैं और धूप आने से पहले ही सब काम निपटा देते हैं, और 10 के बाद तो वो बाहर ही नहीं निकलते। तो जी हाँ, ऑप्शन सी फिलहाल पॉपुलर लग रहा है, पर हमारी जो वरई से दोस्त है हमारे अशोक पाटिल अभी गांव में हैं और गांव के फोटो भेज रहे हैं, आम के पेड़ है, आम रस खा रहे हैं, अनि कैरी से पन्ना पीता है। दोस्तों एंजॉय चल रहा है गर्मी का सीजन, हमें भी एंजॉय करना चाहिए। थैंक यू सो मच, हमें जो इंस्पिरेशन दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, तो ढेर सारे ऑप्शंस अभी नज़र आ रहे हैं हमारे सामने गर्मी से ब्रेक फ्री होने के लिए। हमारे जो दोस्त है कुरला से अयास,

0: लिखता है अभी वो आजकल चाय या कॉफी के बजाय जो है छाछ लस्सी के ऊपर शिफ्ट हो गए हैं, और ककड़ी का सलाद बहुत पसंद करते हैं। जी हाँ, और भी कई सारे दोस्तों ने सजेशन दिया है। राकेश माथुर लिखते हैं कि फिलहाल अभी अभी रिटायर हो चले हैं तो गर्मी में ज़्यादा बाहर जाना पसंद नहीं करते, तो जी हाँ गर्मी एंजॉय करते हैं, और ठंडा ठंडा शरबत भी क्यों ना एंजॉय किया जाए, या कोल्ड कॉफ़ी ही
1: अब
0: सही।

0: जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात हाउस लिस्टिंग आणि हाउसिंग सेन्सस म्हणजे आपल्या आवाजाची गणना होईल. तुमच्या सहभागाने हे यशस्वी करूया. प्रत्येक व्यक्ती जोडली गेले पाहिजे, प्रत्येक घर जोडले गेले पाहिजे आणि देशाने पुढे गेले पाहिजे. जनगणना 2027 आपली आहे. जनगणना आपली आहे.
1: ब्रेक फ्री कार्यक्रम जारी है और ब्रेक फ्री होने के राज, सीक्रेट्स और कुछ उपाय हम डिस्कस कर रहे हैं. और जी हाँ, हमारे जो दोस्त हैं जो कॉलेज जाते हैं, उन्होंने एक अनोखा तरीका ढूंढ लिया है. काफ़ी बार हमने ये देखा है कि उनके हाथों में अपनी तकदीर लेके वो जाते हैं. जी हाँ, उनके हाथों में छोटा सा एक फ़ैन होता है जिससे बहुत ही ठंडी हवा आती है. और एक गर्मी में लेक्चर के दौरान भी कभी कभी वो फ़ैन ऑन करके, मैडम बहुत गर्मी हो रही है, सर बहुत गर्मी हो रही है, क्या करें, तो अच्छा सा स्प्रिंकल आता है और बहुत मज़ा आता है. तो जी हाँ, ये भी एक ऑप्शंस है जो हमारे दोस्त ने भेजा है. और कम से कम कपड़े पहनना, यानी शॉर्ट्स पहनना या फिर 3/4 पहनना, टी शर्ट्स पहनना या फिर सिर्फ लुंगी पहनना हो, या फिर ऐसे भी कुछ ऑप्शंस संदेश आ गए हैं. तो बहुत ही प्यारा तरीका है और इस गर्मी को एंजॉय करने में भी अपना एक ख़ास तरीका होता है. तो हम अक्सर पूछते हैं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ या फिर क्या ये मेरा स्टाइल है. जी हाँ, आइए इसी थीम से भरा एक गीत

जी हाँ, FM रेनबो की स्टूडियो क्लॉक में ठीक 11:56 हो चले हैं और गर्मी से ब्रेक फ्री हम हो ही चुके हैं। जैसे कार्यक्रम का हमने आगाज मेट्रो से किया, वैसे थाने में ही रिसेंटली डबल डेकर एसी बसेस की शुरुआत हो चुकी है। मुंबई में हम लोग एसी डबल डेकर बस तो अक्सर एंजॉय करते हैं, अब हम थाने में भी जो है ये डबल डेकर बस का, एसी बस का आनंद उठा सकते हैं, गर्मी का लुत्फ़ उठा सकते हैं और घूम फिर सकते हैं। तो जी हाँ, एसी लोकल, एसी बसेस और मेट्रो मेरी बहुत प्यारी चीज़ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है मेट्रो से ट्रैवल करना। तो जब भी समय मिलता है मैं झट से मेट्रो की राइड ले लेता हूँ, शॉर्ट राइड। तो जी हाँ, ये ही कुछ तरीके जो आप और हमने मिलके निकाले हैं ब्रेक फ्री होने के। तो आप सुनिए अगला गीत और रॉक ऑन करते रहिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म और ताज़ा ऐसे समाचार लेके बस कुछ ही मिनटों में हाजिर होता हूँ।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, आइए सुनते हैं अभी के ताजा समाचार। विधानसभा चुनाव की मतगणना के बीच प्राप्त रुझान के अनुसार पश्चिम बंगाल में 140 सीटों पर भाजपा प्रत्याशी आगे है, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने 73 सीटों पर बढ़त बनाई है। तमिलनाडु में सुपरस्टार विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़मगम 111 सीटों पर आगे है, जबकि AIADMK 60 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर है। केरल में कांग्रेस 58 सीटों पर आगे है, जबकि CPM 28 सीटों के साथ मुकाबले में बनी हुई है। असम में भाजपा जो है 79 सीटों के साथ बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी 24 सीटों पर आगे है। पुदुचेरी में NDA का हिस्सा रही AINRC पार्टी 8 निर्वाचन क्षेत्र में आगे चल रही है, कांग्रेस दूसरे तथा भाजपा तीसरे स्थान पर है। समाचार में आगे, बारामती और राहुरी विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना भी जारी है। ताजा जानकारी के अनुसार बारामती से उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस की उम्मीदवार सुनेत्रा पवार तथा राहुरी से भाजपा के प्रत्याशी अक्षय करडिले प्रतिद्वंदियों से आगे है। समाचार के अंत में, टेनिस में इटली के यानिक सिनर ने मैड्रिड ओपन में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। यानिक ने फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर लगातार पांचवी बार ATP मास्टर्स 1000 खिताब अपने नाम कर इतिहास रचा है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। सुनते रहिए आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल, म्यूजिकली योर्स।

ये दोस्तों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम म्यूजिक कैफे में। वैसे तो खाने का समय हो चला है, पर जैसे मेरे और मेरे कुछ दोस्त जो है अभी कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, या फिर चाय कॉफ़ी वाला। ऑफिस में थोड़ा सा ब्रेक हो गया होता है, तो वो पल एन्जॉय हम साथ कर रहे हैं। तो जी हाँ, मेरा नाम है आरजे डॉक्टर निखिल विद्या हरेंद्र शास्ने, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल, जो है म्यूजिकली योर्स। तो आइए चलते हैं और सुनते हैं भारत रत्न लता दीदी की आवाज़ में अगला गीत।

दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम म्यूजिक कैफे में। और अगर चाय कॉफ़ी पीकर हो गई हो तो थोड़ी सी गपशप हो जाए। जी हाँ, और कल की ही बात है। जी हाँ, 12वीं का जो रिज़ल्ट आया है उसके बारे में। जी हाँ, महाराष्ट्र बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। तो अच्छा खासा रिज़ल्ट आया है, लड़कियाँ फिर धुरंधर बनी है। जी हाँ, और अगर विभागवार परिणाम की अगर हम बात करें तो पहला नंबर हमेशा की तरह कोंकण विभाग ने लगाया। उसके बाद हमारा जो पूना है वो दूसरे

पायदान पे है, तीसरे पे अमरावती, चौथे पे नाशिक, हमारी मुंबई पांचवे पायदान पे है, छठी पे है कोल्हापुर, सातवें पर छत्रपति संभाजी नगर, आठवें पायदान पर नागपुर और नौवें पायदान पर जो है लातूर है। तो जी हाँ, अगर हम बात कर रहे हैं रिजल्ट्स की, 12वीं के परिणाम के बारे में, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, यानी अभी के माहौल में बेस्ट फ्यूचर, अच्छा भविष्य कौन से फील्ड में होगा, तो कौन से, अगर आपने अभी अभी अगर 12वीं दी होती, या तो कौन सा फील्ड बहुत प्रॉस्परस लग रहा है, जिससे बहुत देश को भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा और पूरे विश्व को फायदा होगा, कौन सा ऐसा करियर है, क्या लगता है? जी हाँ, जल्दी हमें बताइए, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8657661071, यानी 8657661071। तो जी हाँ, छुट्टियाँ भी चल रही है, पर आगे के बारे में भी सोचना होगा और साथ में संगीत के साथ झूमना भी चाहिए।

0: या अज्ञात कथा आकाशवाणीच्या रेनबो आणि अस्मिता वाहिनीवर या दोन्ही ठिकाणी आपल्याला ऐकता येणार आहे. त्यामुळे जोडलेले राहा, भेटूच
1: लवकरच.
2: दोस्तों, म्यूजिक कैफे कार्यक्रम जारी है मेरे यानी आरजे डॉक्टर निखिल के संग. और हमारे जो दोस्त है पुणे से राकेश माथुर लिखते हैं कि करियर के बारे में बातचीत चल रही है कि कौन सा करियर ऑप्शन सही होगा, कि 12वीं का जो परिणाम है हाल ही मतलब कल ही आया है. तो अक्सर जो पेरेंट्स हैं या फिर बच्चे हैं विद्यार्थी है आगे कौन से क्षेत्र में जाए इसके ऊपर सोच रहती है. तो राकेश माथुर लिखते हैं कि मेडिकल फील्ड तो सदाबहार है और वैसे आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा जोर है, तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. बहुत ही अच्छा सुझाव है. हमारे जो दोस्त हैं अयास कुरला से कहते हैं कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. साथ ही उन्होंने फोटोग्राफी के बारे में भी कहा है कि फ़ोटोग्राफी में भी आप आगे बढ़ सकते हैं, या फिर ये फ़ोटो जर्नलिज़म जो है

वो उभर कर आ रहा है, उसके ऊपर भी काम हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा करियर ऑप्शन जो है उससे भविष्य और सुनहरा होगा? तो हमें बताइए, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8657661071, यानी 8657661071। और सदाबहार गीत भी हम एंजॉय करेंगे साथ ही।

सुरेश जो है, काशीनाथ पाटिल और अविनाश दामोदर कड़ू, इनका संदेश आया है। वेरी गुड आफ्टरनून। और श्रेय राउत, मिलेश गजानन राउत वाढवण से हमारे दोस्त है, उनका भी संदेश आया है। प्रणव शिंदे का, मेहर अरोड़ा का राजस्थान से संदेश आया है। और जी हाँ, 12वीं के बारे में बात चल रही है। पंकज मोहड़ लिखते हैं कि वैसे तो 12वीं के बाद साइंस में मेडिकल कि अगर पढ़ाई की जाए तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो मेडिकल फील्ड है, वैद्य की एक क्षेत्र है, वो उससे हम समाज सेवा भी कर सकते हैं, लोगों के काम भी आ सकते हैं, और देश की सेवा का भी एक मौका मिलता है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात पंकज ने लिखी है कि 12वीं के मार्क्स भी उन्होंने लिखे हैं, लगभग 70% उनको मार्क्स थे। तो जी हाँ, आपको कितने मार्क्स थे 12वीं के एग्ज़ाम में? बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा प्राइवेट ऐसा ख्याल जो सवाल है, कुछ लोगों को बताना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता, पर वी शुड बी प्राउड ऑफ अवर सेल्फ। हमने बहुत मेहनत की होती है। 10वीं में इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं होते, अगर मैं लड़कों की बात करूँ तो 12वीं में थोड़ा सीरियसनेस आ जाता है कि आसपास की दुनिया समझ में आती है, तो पढ़ाई में जोर लगाते हैं। आपको कितने परसेंट मार्क आए 12वीं में या फिर 10वीं में, जो भी अच्छा हो, दोनों बता सकते हैं, या फिर 10वीं 12वीं कौन सी भी कक्षा में जो अच्छे मार्क्स है वो आप बता सकते हैं। अच्छे नहीं है फिर भी कोई बात नहीं, ऐसे नहीं है कि परीक्षा ही पूरा जीवन है। अगर परीक्षा में अच्छे मार्क्स नहीं है, पर कला क्षेत्र में भी हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो पर पढ़ाई का अपना इम्पोर्टेंस है हमारे भारतीय संस्कृति में। तो जी हाँ, आप आपके 10वीं 12वीं के मार्क्स भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, परसेंट। तो जी हाँ, पंकज मोहड़ लिखते हैं 70% उनको मार्क्स थे, फर्स्ट क्लास ऐसे मार्क्स आए हैं। तो ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे मार्क्स बताऊं या नहीं, मैं थोड़ा सोचता हूं और अगले गीत के बाद आपको बताता हूं। वैसे 12वीं के बाद करियर ऑप्शंस क्या रखने चाहिए, इस पे हमारी चर्चा जारी है। मार्क्स अच्छे मिले हैं, डॉक्टरी में गया हूं तो मार्क्स अच्छे ही हैं। तो आपको बताऊं तो थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करने का मन है, इसलिए थोड़ा सा अपने आप को रोक रहा है।

0: या अज्ञात कथा आकाशवाणीच्या रेनबो आणि अस्मिता वाहिनीवर या दोन्ही ठिकाणी आपल्याला ऐकता येणार आहे. त्यामुळे जोडलेले राहा, भेटूच
1: लवकरच.
2: म्यूजिक कैफे कार्यक्रम जारी है मेरे यानी आरजे डॉक्टर निखिल के संग और हमारे जो दोस्त हैं प्रकाश शिंदे. तो हमने ब्रेक से जाने से पहले बातें की थी 10वीं और 12वीं के मार्क्स के बारे में. तो तुरंत उन्होंने अपने मार्क्स हमें बताए कि 10th में उन्हें 65% मिले थे और अपनी स्कूल में वो प्रथम आए थे और 12th में 70%. हाल ही में उनकी बेटी जो है प्राची, उन्होंने जो है 10th में उनको 91% मार्क आए और अभी अभी 12th का जो रिज़ल्ट लगा उसमें उनको 85% आए. साइंस फैकल्टी से उन्होंने बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ, परसेंट के साथ एग्ज़ाम पास की. तो ढेर सारी शुभकामनाएं प्राची आपके लिए. और प्रकाश शिंदे का ये कहना है, ये मानना है कि, और प्राची का भी ये इंटरेस्ट है कि कंप्यूटर फील्ड में आगे जाए और एआई में कुछ अगर खास कर पाए तो वो भी एक अच्छा करियर ऑप्शन होगा. हमारी दोस्त शुभदा लिखती है कि होटल मैनेजमेंट, जी हाँ, होटल मैनेजमेंट में भी बड़ा करियर है, तो उसको भी हमें नज़रअंदाज नहीं चाहिए करना चाहिए, बहुत स्कोप है. वो लिखती है उनके

जो उनका जो बेटा है उन्होंने किया है होटल मैनेजमेंट, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, अब्रॉड भी जा सकते हैं, बहुत सारे तौर तरीके नए देश में जाने मिलता है, वहाँ भी आप जाके प्रॉपर्टीज़ बना सकते हैं और फाइनेंशियली बहुत ही अच्छे स्तर पर आप जा सकते हैं, ऐसा शुभदा लिखती है। और एक फील्ड जो है वो मैं आपको थोड़ा सजेस्ट करना चाहूँगा कि साइकोलॉजी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फील्ड है। समुपदेशन काउंसलिंग भी बहुत इंटरेस्टिंग ऐसा सब्जेक्ट है, तो अक्सर मेडिकल के साथ ही इस क्षेत्र के बारे में भी हमें सोचना चाहिए, क्योंकि आगे जाके आप हम देख रहे हैं कि डिजिटल वर्ल्ड पूरा डिजिटल, जिसे हम ग्लोबल विलेज कहते हैं, तो टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़ रहे हैं पर ह्यूमन टच जो है वो मिस कर रहे हैं, और दिल की बात दिल में ही रह जाती है। और ये जो वेंट आउट करने के लिए काउंसलिंग, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आखिर में हम ह्यूमन हैं, रोबोट नहीं। जी हाँ, हम रोबोट बनाते हैं, इंटेलिजेंट है, पर हमारी इमोशंस है और उसकी वेंटिलेशन, उसे एक्सप्रेस करना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए साइकोलॉजी फील्ड या फिर काउंसलिंग के बारे में भी सोचिए, ऑनलाइन कोर्सेस भी सोचिए, और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, मैं बताता हूँ आपको। और हेल्थ सेक्टर भी अच्छा होने वाला है आगे जाके, ऐसे कहा जाता है हमारे हेल्थ सेक्टर में कि AI का उपयोग होने वाला है। और आपको अभी 12:52 बन चले हैं, तो अभी आपको खाना चाहिए, और खाने में 2 रोटी लेनी चाहिए, फ्लावर की सब्ज़ी लेनी चाहिए, साथ में थोड़ी बहुत दाल लेनी चाहिए। ये सब भी स्पेसिफाइड आपको आपका जो AI है या मोबाइल आगे जाके बताने वाला है। तो जी हाँ, दूरदृष्टि रखनी चाहिए, और पर्सनलाइज्ड डाइट का चार्ट कहिए, या फिर अगर किसी को डायबिटीज़ की शिकायत है, हाइपरटेंशन की यानी उच्च रक्तचाप की तकलीफ़ है, तो आपको लाइफस्टाइल कैसे रहनी चाहिए। और आगे जाके शायद से ये फ्री सर्विस भी हो सकती है, पेड सर्विस भी हो सकती है, पर जी हाँ, हमें ये सोचना चाहिए कि टेक्नोलॉजी का आपके पर्सनलाइज हेल्थ केयर के लिए, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के लिए कैसा उपयोग किया जा सकता है। तो जी हाँ, और 10वीं 12वीं के मार्क के बारे में मैंने आपसे कहा था, तो 78% आए थे वैसे जनरल इसमें, और PCB बायोलॉजी लगता है, तो उसमें बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, तो आगे CET देके आगे हम मेडिकल क्षेत्र में एंटर कर सकते हैं, उसमें अच्छे मार्क्स आए थे। तो आई एम हैप्पी अबाउट माई स्टडीज़, लेट्स गो एंड टच द स्टार्स। जी हाँ, प्रैक्टिकली आप कैसे जीते हो ये भी बहुत मायने रखता है। तो आइए, अभिजीत की आवाज़ में ये बहुत ही प्यारा गीत, हमें प्रेरणा देने वाला गीत सुनते हैं, घड़ी में ठीक 12:53।

0: हमारे जो दोस्त हैं अशोक पाटिल वरे से, वो लिखते हैं वो पढ़ाई में कुछ खास नहीं कर पाए पर उन्होंने अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाया। जी हाँ, उनका उनकी जो लड़की है वो बैंक में काम करती है, कॉमर्स ग्रेजुएट है, और लड़का जो है वो रिजर्व बैंक में काम करता है। तो शिक्षा का एक शिक्षा की जो अहमियत है, सही जो डायरेक्शन है, सही क्षेत्र का चुनाव भी बहुत ज़रूरी है, ये इन्होंने पहचान दिया और उस हिसाब से अपने जो बेटा है बेटी को अच्छा पढ़ा के अच्छे फील्ड में अभी वो सेटल्ड है। तो आप सभी को शुभकामनाएं, अशोक पाटिल आपको शुभकामनाएं। और दोस्तों, घड़ी में ठीक 12:01 बजने ही वाला है, और 1 बजे आप हमारे छत्रपति संभाजी नगर केंद्र से सुनेंगे मराठी समाचार। दोपहरच्या बातम्या आपण ऐकणार आहोत। 1:05 पे हमारा जो फेवरेट कार्यक्रम है हिट एंड हॉट लेके मैं आरजे डॉक्टर निखिल फिर हाजिर होऊंगा। और वैसे आप सभी की जो रिक्वेस्ट है उसकी बरसात हो रही है कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो जिन्होंने अब तक नहीं की तो जल्दी से हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर रिक्वेस्ट कीजिए। नंबर है 8657661071, यानी 8657661071। तो आइए कुछ ही पल में हम सुनेंगे मराठी में समाचार।
1: आकाशवाणी @90 निमित्तानं आकाशवाणी मुंबई आयोजित करत आहे सूर गौरव संध्या।
2: विदुषी डॉक्टर एन राजम यांच्या व्हायोलिन वादनाची आणि मुलाखतीची खास मैफल, तबला साथ पंडित मुकुंदराज देव, व्हायोलिन संगत अभिषेक सिन्हा।
1: गुरुवार दिनांक 7 मे रोजी रात्री 8 वाजता।
2: स्थळ आहे स्वातंत्र्यवीर सावरकर सभागृह, दादर पश्चिम, प्रवेश विनामूल्य।
1: सर्व रसिकांना हार्दिक निमंत्रण। सूर गौरव।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: नमस्कार, वेरी गुड आफ्टरनून. आप सभी का हार्दिक स्वागत है. मैं आरजे डॉक्टर निखिल विद्या हरिंद्र शास्ने, और कार्यक्रम जो है हिट एंड हॉट, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है, कर्तव्य बनता है कि गाड़ी की स्टेयरिंग जो है वो आपके हाथ में दी जाए. यानी इस प्रोग्राम में सभी जो गीत है वो आपके पसंद के होंगे. तो जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप कीजिए आपके पसंद के गीत. नंबर है 8657661071, यानी 8657661071. आप सुन रहे आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल. एफएम रेनबो का ये प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं. तो प्रवीण जी, आपकी जो रिक्वेस्ट है आप तक और हम सभी तक पहुंच रही है. आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत.

1:11 होने चले हैं और दोस्तों पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। जी हाँ, मुझे भी भूख लगी है तो खाने की याद आ रही है। तो शायद आपका खाना हो भी चुका हो, या फिर आप खाना अपना खा रहे हो, या फिर खाने जाने ऑफिस का जो ब्रेक है वो हो गया हो। तो आपको मुझे बताना है कि अभी इसी वक्त आपको कौन सी चीज़ या फिर कौन सा जो खाद्य पदार्थ खाने का मन कर रहा है। हाँ, वेग नहीं बताना है, स्पेसिफिक। अगर स्वीट्स में जैसे मुझे अभी पूरण पोड़ी खाने का मन है, ठीक है, मैं खाऊं न खाऊं, मुझे मिले अभी या न मिले वो दूसरी बात है, पर स्पेसिफिकली आपको बोलना है कि अभी इस वक्त आपको कौन सी चीज़ या फिर कौन सा जो फूड आइटम खाने का मन है, या फिर जी हाँ आप छाछ वगैरह भी बोल सकते हैं, पर सबसे ज़्यादा अंदर से चाह कौन सा जो ऐसा पदार्थ है, फूड है, जो आपके मन के द्वार पर जो है वो बार बार दस्तक दे रहा है। तो विजेंद्र घाटोल अकोला जी, हाँ आपकी फरमाइश आप तक पहुंच रही है किशोरदा की आवाज़ में। अगला गीत सोमवार है तो आइए एंजॉय करते हैं ये गीत।

मोतीचूर का लड्डू। जी हाँ, हमारे जो दोस्त है प्रकाश शिंदे, उनका फोन आया और उनका कहना है उन्हें अभी के अभी मोतीचूर का लड्डू खाने का मन हो रहा है। बहुत बढ़िया। और हमारे जो दोस्त है फिरोज़ सिंगनपुरिया, वो कहते हैं उन्हें मैंगो कुल्फ़ी खाने का मन हो रहा है। बहुत बढ़िया। और भी इंदौर से हमारे जो दोस्त है प्यारे दोस्त अजय साखरे, मालपुआ खाने का उन्हें मन हो रहा है। तो दिली कामनाएं आप सभी की, जो ये इच्छाएँ हैं वो पूरी हो जाए। हाँ, तो और भी कई सारे संदेश आ रहे हैं। पंकज मोहड़ लिखते हैं उन्हें भी पूरन पोई खाने का मन हो रहा है। जी हाँ, ग्रेट माइंड्स थिंक्स अलाइक। जी हाँ, मुझे भी पूरन पोई खाने का मन हो रहा है। और भी कई सारे डिलीशियस डिशेस जो हैं, पर काफ़ी सारे जो हमारे दोस्त हैं उनको मीठा पसंद है, काफ़ी सारे स्वीट डिशेस। पुणे से अपने पुण्याहून मुकुंद कुलकर्णी है ताणी, त्यांना काय बरं बंगाली मिठाई उनके खाने का मन हो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जी हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा स्वीट की और अलग अलग डिशेस के बारे में बात चल रही है, तो मुंह में पानी छूट रहा है दोस्तों। शायद आपको भी मुंह में पानी छूटता हो इन जो चीज़ों की जब हम नाम लेते हों। तो बेहतरीन गीत की फरमाइश की है फिरोज़ सिंगनपुरिया इन्होंने। आइए, चौदहवीं का चांद सुनते हैं रफ़ी साहब की आवाज़ में। और यही जो आपको कौन सा फूड क्रेविंग अभी हो रही है हमें व्हाट्सएप करना है, नंबर तो आपको पता ही है। बेहतरीन गीत सिर्फ और सिर्फ FM रेनबो पर।

दोस्तों प्रमोद चिंचोलकर, जी हाँ, प्रमोद चिंचोलकर अकोला से। ये मैं ऐलान करना चाहता हूँ, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि उनके घर पे जो है अभी आमरस बना है और गेहूं के मांडे बने हैं और वो मुझे इनवाइट कर रहे हैं। तो इनका रिक्वेस्ट किया हुआ गीत मैं कैसे प्ले ना करूँ। तो प्रमोद चिंचोलकर जी, एंजॉय कीजिए अगला गीत, क्योंकि आमरस की जब बात निकलती है तो हम सभी को कुछ कुछ होता है।

रेनबो क्लॉक में बजे हैं ठीक 1:25, ठीक 1:30 पे आप सुनेंगे समाचार जो है राष्ट्रीय मराठी समाचार जो है वो आप सुनेंगे, और 1:40 पे हमारे जो पसंदीदा कार्यक्रम है हिट एंड हॉट जारी रहेगा मेरे यानी आरजे डॉक्टर निखिल के संग। और जी हाँ, हमारे जो दोस्त हैं नारायण सोनटक के हिंगोली से, जवड़ा बाजार औढ़ा हिंगोली से लिखते हैं कि उन्हें गुलाब जामुन खाने का मन हो रहा है, बहुत बढ़िया। स्नेहा वरेड़ी से लिखती है कि हापुस आम खाने का मन कर रहा है, और अकोला से विजेंद्र घाटोल लिखते हैं उन्हें भी हापुस आंबा खाने का मन कर रहा है। तो जी हाँ, आप सभी की जो फरमाइश है, खाने की जो फरमाइश है, वो सुन के मुझे भी बहुत प्यारा प्यार आ रहा है खाने के ऊपर, और जल्दी से जल्दी कब मैं खाना खाने जाऊँ ऐसा हो चला है, और स्वीट्स जो इसके नाम ले रहे हैं वो खा सकूँ। तो कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा इंतज़ार, पर खाने में जो है जो इनविटेशंस भी आ रही हैं मुझे, तो कोई बात नहीं, मुझे मेरी याद निकाल के खा लेना, कोई बात नहीं, मुझ तक पहुंच जाएगा। हमारे जो दोस्त हैं अयास, वो इनवाइट करते हैं आलू के परोठे और दही खाने के लिए इनवाइट कर रहे हैं। तो अयाज जी एंजॉय कीजिए, एंजॉय कीजिए, और गर्मा गर्म जो है मांडे का भी फोटो भेजा है प्रमोद चिंचोलकर जी ने, तो वर्चुअली मुझ तक जो है आमरस और गेहूं का जो मांडा होता है वो पहुंच चुका है, कोई बात नहीं। तो इसी में अपनी तृप्तता मान लेता हूं, और फरमाइशी गीत है छत्रपति संभाजी नगर से, पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि समय कम है शुभम, तो ये आपके लिए, और आशा ताई की आवाज़ में बेहतरीन गीत श्री 420 फिल्म से उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, तो कैसे ना कह सकता हूँ। हाँ, तो आइए एंजॉय करते हैं, झलक ही सही, एंजॉय करते हैं ये गीत।

रामकृष्ण हरि। श्री क्षेत्र पंढरपुर से हमारे जो दोस्त हैं गणेश कोल्हे, उन्होंने लिखा है कि उनकी बेटी गौरी को गुलाब जामुन और बेटे जय को पानी पूरी खाने का मन हो रहा है। तो बहुत बढ़िया, क्रेविंग्स की बात चल रही है। तो जी हाँ, आपको कौन सा खाद्य, कौन सा पदार्थ खाने का मन कर रहा है, हमें ज़रूर बताइए। तो आइए कोले जी, आप ही क्या पसंद का ये गीत सुनते हैं शान की आवाज में, प्रेम रतन धन पायो। श्री कृष्ण जी ने भी विदुर के घर खाना पसंद किया था क्योंकि प्रेम उसके साथ जुड़ा था।

0: जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात हाउस लिस्टिंग आणि हाउसिंग सेन्सर्स म्हणजे आपल्या आवाजाची गणना होईल. तुमच्या सहभागाने हे यशस्वी करूया. प्रत्येक व्यक्ती जोडली गेले पाहिजे, प्रत्येक घर जोडले गेले पाहिजे आणि देशाने पुढे गेले पाहिजे. जनगणना 2027 आपली आहे. जनगणना आपली आहे.
1: आकाशवाणी @90 निमित्तानं आकाशवाणी मुंबई आयोजित करत आहे सूर गौरव संध्या.
2: विदुषी डॉक्टर एन राजम यांच्या व्हायोलिन वादनाची आणि मुलाखतीची खास मैफल. तबला साथ पंडित मुकुंदराज देव. व्हायोलिन संगत अभिषेक सिन्हा.
1: गुरुवार दिनांक 7 मे रोजी रात्री 8 वाजता.
2: स्थळ आहे स्वातंत्र्यवीर सावरकर सभागृह, दादर पश्चिम. प्रवेश विनामूल्य.
1: सर्व रसिकांना हार्दिक निमंत्रण. सूर गौरव संध्या.
3: जी हाँ दोस्तों, आकाशवाणी @90 सही सुना आपने, सूर गौरव संध्या. इस कार्यक्रम में पद्म विभूषण विदुषी डॉक्टर एन राजम, इनका जो वायलिन प्लेइंग है और खास इंटरव्यू है, पंडित मुकुंद राज देव तबले पे संगत दे रहे हैं और साथ में हैं अभिषेक सिन्हा जो वायलिन में संगत देने वाले हैं. समय और गुरुवार का दिन 7 मई की तारीख 2026 रात 8 बजे का समय आपको नोट करना है. सेव द डेट. मैं फिर से एक बार डेट कहता हूँ, 7 मई यानी इस गुरुवार को रात्रि 8 बजे का समय स्वातंत्र्यवीर सावरकर सभागृह दादर पश्चिम में ये कार्यक्रम होने वाला है. आकाशवाणी @90 सुर गौरव संध्या ऐसे इस कार्यक्रम का नाम है और एंट्री निशुल्क है. तो ज़रूर आप आइए और संगीत और ये जो सुरमयी संध्या का आनंद ज़रूर उठाइए. तो दोस्तों, ढेर सारे आपके मैसेजेस आए हैं, मैं सभी की फरमाइशें पूरी नहीं कर पाया. कोई बात नहीं, पर आपका नाम, दोस्तों का नाम लेने में बहुत मज़ा आता है. तो बिहार से हमारे जो दोस्त हैं आर्यन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार, इनका संदेश आया. और जैसे मैंने कहा, गणेश कोल्हे और भी कई, इनका नाम अगर आप नाम लिख देंगे तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि कभी कभी नाम डिस्प्ले नहीं होता. मदन गौरव, इनका संदेश है. शुभलक्ष्मी मस्कर वियापुर से जो है, दत्तात्रेय अड़त, इनका पंकज मुहूड़ कहिए, संदीप कुमार कहिए, उसके बाद महेश बोहरा कहिए, अभिजीत गवाणकर, राकेश माथुर दिग्दर्शन और कविता, प्रणव शिंदे, प्रमोद चिंचोलकर, मेहर अरोरा, स्नेहा वरेई से, मुकुंद कुलकर्णी, वेद मिंडा, अलका मिंडा और दीपा पालकर कहिए, मुकेश कश्यप कहिए, हितेंद्र दास कहिए और नितिन स्वामी ऐरोली से, हीरामणि वर्मा, प्रवीण जी, राजेंद्र परमार कहिए, प्रवीण कुंभार कहिए, नवीन मुंबई से हैं, और सुरेश काशीनाथ पाटिल, श्रेय राउत और डॉक्टर अंजू, आप सभी का धन्यवाद. आप शामिल हुए कार्यक्रम में और ढेर सारी क्रेविंग्स आपकी आपने हम तक पहुंचाई, तो इससे थोड़ा एपेटाइज़र हो गया, भूख बढ़ गई है और तेज़ हो गई है. तो जल्दी खाना खा लेते हैं और सेहत अच्छी बना के रखते हैं. और आपको ढेर सारा याद प्यार. थैंक यू सो मच. मुझे यानी आरजे डॉक्टर निखिल को दीजिए इजाज़त. हिंदुस्तान के साथ नाचने, हिंदुस्तान के साथ गाने. फिर आएगा आरजे डॉक्टर निखिल शासने. एंजॉय करते हैं लास्ट गीत. दीपा पालकर, इनकी फरमाइश है. आइए रोमांटिक.

ठीक 2 बजे हम सुनेंगे दोपहर समाचार और 2:30 पे हमारे साथ होंगी आरजे ग्रीष्मा लेके मराठी कार्यक्रम सला दोस्त हो बोलू का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनक लता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी जीत की ओर अग्रसर। 293 सीटों में से 193 सीटों पर आगे। तृणमूल कांग्रेस की 93 सीटों पर बढ़त। असम में भाजपा तीसरी बार सत्ता में आने को तैयार। तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके की अपने पहले ही चुनाव में जबरदस्त सफलता। सत्तारूढ़ डीएमके तीसरे स्थान पर। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन पीछे चल रहे हैं। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ स्पष्ट बहुमत की ओर। पुदुचेरी में एनडीए की सत्ता में फिर वापसी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने त्रिपुरा, नागालैंड और गुजरात में एक एक सीट जीती। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना के रुझानों से भविष्य की राजनीति की दिशा तय होने के संकेत मिल रहे हैं। पश्चिम बंगाल और केरलम में सत्ता परिवर्तन तय नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में भाजपा को ऐतिहासिक जीत मिलने जा रही है और वो पहली बार इस पूर्वी राज्य में सरकार बनाएगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 293 सीटों में से 292 के रुझान मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने काफी बढ़त बना ली है और वो 193 सीटों पर आगे है। तृणमूल कांग्रेस गठबंधन 93, AJUP 2, AISF 2, कांग्रेस 1 और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 1 सीट पर आगे है। राज्य की फलता सीट पर दोबारा चुनाव कराने का फैसला किया गया है। यहां 21 मई को मतदान होगा। पश्चिम बंगाल से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता कल्याण लाहा से। कल्याण, भाजपा पश्चिम बंगाल में जीत की ओर अग्रसर है। पश्चिम बंगाल की टीएमसी से मुक्ति का नारा अब वास्तविकता में बदलता दिख रहा है। टीएमसी के पिछड़ने के क्या प्रमुख कारण हो सकते हैं?
1: देखिए, हम अभी जो दिख रहे हैं ग्राउंड में, बीजेपी बहुत सारे सीट में अभी आगे है। और जो आप बोल रहे हैं क्या क्या कारण हो सकता है, देखिए लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बहुत बड़ा सिचुएशन है इधर। और आर्टिकल जो इंसिडेंट है हुआ है उसके बाद उसके सेम टाइप का बहुत सारे इंसिडेंट है। लैक ऑफ जॉब है और आपका जो डिससेटिस्फेक्शन है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनके अंदर जो डिससेटिस्फेक्शन है। और आपको जैसे मैं पहले बोल रहा था, जॉब गवर्नमेंट सेक्टर में कोई भी जॉब ऐसा नहीं है, रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। और आपका जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है जो उसका जिक्र मैं पहले किया था, वो जो आम जनता है उनका गवर्नमेंट के ऊपर जो विश्वास था, जो फेथ है, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। इसका जो रिजल्ट आपको अभी ग्राउंड में दिख रहा है, बीजेपी बहुत सारे सीट में अभी लीडिंग है और एक थम्पिंग मेजोरिटी के साथ सामने आएगा।
0: जानकारी के लिए धन्यवाद कल्याण। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ गठबंधन सत्तारूढ़ एलडीएफ से बहुत आगे निकल गया है। वहां विधानसभा की सभी 140 सीटों में से 9 के परिणाम मिल गए हैं। 6 सीटें कांग्रेस, 2 मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और 1 सीट IUML ने जीती हैं। पुतुपल्ली सीट कांग्रेस के चांडी ओमन, हरिपद सीट रमेश चन्नीतला, नीलांबुर सीट आर्यदन शौकत, त्रिशूर सीट राजन जे पल्लन और कोल्लम सीट बिंदु कृष्णा ने जीती। अलतूर से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के TM शशि विजयी रहे। रुझान इस प्रकार है, कांग्रेस 54, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 26, IUML 22 और CPI 9 पर आगे। पुदुचेरी में परिणाम और रुझानों में AINRC की सत्ता बरकरार रहने के साफ संकेत हैं। भाजपा प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि विधानसभा चुनावों के शुरुआती रुझान भाजपा के पक्ष में हैं और पार्टी असम तथा पश्चिम बंगाल में भारी बहुमत से जीत हासिल करने जा रही है। श्री सिन्हा ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने तृणमूल कांग्रेस की राजनीति को नकार दिया है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के रुझान भाजपा के पक्ष में उभर रहे हैं।
2: पश्चिम बंगाल में जो रुझान दिख रहे हैं वो दर्शा रहे हैं कि बंग भूमि में राष्ट्रवाद की तरंग उठी है और रुझान दिखा रहे हैं कि वो निरंतर एक ज्वार में परिवर्तित हो रही है और जब वो परिणाम में परिवर्तित होंगे तो वो सुनामी के रूप में दिखाई पड़ेगी। 12 वर्षों के सतत प्रयत्न और हमारे केंद्रीय नेतृत्व की दूरदृष्टि के साथ, कार्यकर्ताओं के संघर्ष बलिदान के साथ हम इस मुकाम तक पहुंचते हैं। असम में 2011 के चुनाव में हमारी 3-4 सीट, यहाँ लगातार तीसरी बार सरकार है। ये अपने आप में दिखाता है कि पूर्वोत्तर में कितना बड़ा बदलाव आया है।
0: भाजपा नेता GVL नरसिम्हा राव ने विधानसभा चुनावों के रुझानों में ऐतिहासिक जनादेश देने के लिए असम और पश्चिम बंगाल की जनता द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनके विकास मॉडल को वोट देना बताया है। भाजपा नेता रवि त्रिपाठी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने भाजपा को स्पष्ट जनादेश दिया है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि ये केवल शुरुआती रुझान है और पूरी तस्वीर साफ होने पर ही कुछ कहना उचित होगा। असम में भाजपा तीसरी

0: सरकार बनाने जा रही है। असम में विधानसभा की 126 सीटों में से 2 के परिणाम मिले हैं। बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के चरण बोरो ने मजबूत सीट जीती है। धेमाजी सीट से सत्तारूढ़ भाजपा के डॉ. रणोर पेगू विजयी रहे हैं। भाजपा 78, कांग्रेस 24, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट 9, असम गण परिषद 8, AIUDF 2 और अन्य 3 सीट पर आगे हैं। असम से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राकेश डोले से। राकेश, असम में एनडीए अपने उम्मीदों के अनुरूप लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। असम सोनमलेता मोर्चा पिछड़ गया है, खुद गौरव गोगोई हार गए हैं। श्री गोगोई के हार के पीछे क्या उनके परिवार पर लगे आरोप भी एक कारण है?
1: जो परिवार आप जो बोल रहे हैं, परिवार पर लगे आरोप कारण है, ये एग्जैक्टली बता पाना मुश्किल है। बट द थिंग इज दैट जो वेलफेयर स्कीम्स और जिस तरह की चीजें एनडीए गवर्नमेंट ला रही थी यहाँ पर, दिस कैन बी बिग रीजन, ये बहुत बड़ा एक रीजन बन सकता है,
0: खासकर महिलाओं के लिए जो वहाँ चलाए गए थे कार्यक्रम जी, और उनका भी योगदान रहा है जीत में।
1: जी, आप अरुणोदय की बात कर रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एक स्कीम है। अभी बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि वो जो 1250 रुपीस मिल रहे थे मंथली, वो बढ़ा के 3000 कर देंगे। फिर आप हम लोग अब जब देखेंगे लास्ट इलेक्शन के साथ कंपेयर करेंगे, अपर असम गढ़ था बीजेपी के लिए, वहाँ पे 36 सीट में से उन लोगों ने एनडीए ने जीता था अराउंड 31, वो वहाँ पे वो गढ़ था। पर अभी आप इस तरह के रुझान देख रहे हैं पूरे असम में, बीजेपी जो है लीड लेकर बैठे हुए हैं, दो तो जीत चुके हैं, फिर एक बीपीएफ जो उन्हीं के घटक पार्टी है, जो अलायंस पार्टी है बीटीआर रीजन से, वो भी एक जीत चुकी है। तो इन टोटल 80 बीजेपी जो है 78 सीट पे लीडिंग है अभी, और कांग्रेस मात्र 23 सीट में।
0: जानकारी के लिए धन्यवाद राकेश। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों में से 3 के परिणाम मिल गए हैं और तीनों ही भाजपा के खाते में गए हैं। गुजरात की उमरेड सीट भाजपा उम्मीदवार हर्ष दभाई गोविंद भाई परमार ने जीती। कर्नाटक की बागलकोट से कांग्रेस उम्मीदवार उमेश हुलाप्पा मेती और दावंगेड़े दक्षिण से कांग्रेस उम्मीदवार समर्थ शमनूर मल्लिकार्जुन आगे हैं। महाराष्ट्र की राहुरी सीट से भाजपा उम्मीदवार अक्षय शिवाजीराव करदेले और बारामती सीट से पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार सुनेत्रा अजित बार बढ़त बनाए हुए हैं। नागालैंड की कोरिडांग सीट भाजपा उम्मीदवार दाउचीर आई एम चेन ने जीती। त्रिपुरा की धर्मनगर सीट से भाजपा उम्मीदवार जाहर चक्रवर्ती विजयी रहे। नागालैंड में भाजपा उम्मीदवार दाउचीर आई हिमचेन ने 28 कोरिडांग विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में 3123 वोटों से जीत हासिल की। उन्हें 7317 वोट मिले। उन्होंने निर्दलीय प्रतिद्वंदी तोशिकाबा को हराया, जिन्हें 4194 वोट मिले। इस सीट के लिए कुल 6 उम्मीदवार मैदान में थे। निर्दलीय उम्मीदवार इमते वापांग को 3633 वोट मिले, जबकि राष्ट्रीय जनता पार्टी के आई अबेन जांग को 3219 वोट मिले। निर्दलीय उम्मीदवार इमचाटोबा इमचेन को 147 वोट मिले, वहीं कांग्रेस उम्मीदवार टी चालुकुम्बा आओ को सबसे कम 144 वोट मिले। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु में विधानसभा की सभी 234 सीटों के रुझान मिल गए हैं। अभिनेता विजय जोसेफ की पार्टी टीवीके ने सभी को चौंकाते हुए 112 सीटों पर बढ़त बना ली है। AIADMK 58, DMK 47, PMK 5, कांग्रेस 4, CPI 2, भाजपा 1 और अन्य 4 सीट पर आगे हैं। चेन्नई से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी से। सुशील, वर्ष 2024 में बनी अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी की अप्रत्याशित जीत ने तमिलनाडु में वर्षों से चले आ रहे डीएमके या AIADMK की सरकार बनाने की परंपरा को तोड़ दिया है। इस जीत के पीछे क्या प्रमुख वजह है?
2: देखिए कनक, जो आप अगर इसकी वजह के उसमें जाएंगे तो पहली चीज तो ये है कि मतदाता ने एक नए सिरे से, खास तौर पे नए मतदाता जो यंग वोटर्स हैं और युवा मतदाता हैं, यंग वोटर्स यानी फर्स्ट टाइम वोटर्स जो पहली बार वोट डाल रहे थे वो लगभग 14 लाख के आसपास थे और 1 करोड़ से ज्यादा युवा मतदाता 30 से कम की उम्र के थे। इनके बीच विजय का एक करिश्मा था, एक जादू था। उसके साथ ही जो सरकार के खिलाफ माहौल था, विजय ने उस माहौल को पूरी तरह से भुनाया और जयललिता के जाने के बाद इस तरीके का एक फिल्म स्टार या उस तरीके के करिश्मे वाले विपक्ष के नेता की कमी महसूस की जा रही थी, उस कमी को भरने में विजय जो है वो कामयाब होते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने लोगों से ये

0: वादा भी किया था, उन्होंने कोई द्रविड़ियन पॉलिटिक्स के जो सिंबल्स थे उनको भी अपने साथ अपने प्रचार में जरूर कैरी किया, लेकिन उसका कहीं पर खुले तौर पर सामने जिक्र नहीं आया। वो किसी विचारधारा से प्रेरित होकर के नहीं आए, वो किसी आंदोलन की उपज नहीं थे, लेकिन सरकार के खिलाफ गुस्सा और नई जनरेशन, यंग जनरेशन, जेंजी जो है और युवा जो है, उनकी नई सोच ने तमिलनाडु में ये राजनीतिक परिवर्तन दिखाया है जो द्रविड़ियन राजनीति से अलग दिखता जाता हुआ नजर आ रहा है।
1: धन्यवाद, धन्यवाद सुशील। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जमैका में भारतीय समुदाय के साथ चर्चा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि जमैका के प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। दोनों पक्षों के बीच खासकर बुनियादी ढांचे, मानव विकास और तकनीक आधारित शासन तथा उद्यमिता पर विमर्श हुआ। दोनों नेताओं ने भारत जमैका संबंधों में हाल के घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। डॉ जयशंकर जमैका, सूरीनाम तथा त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा पर हैं। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों के परिणाम घोषित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। अब बात करते हैं भाजपा मुख्यालय में मौजूद हमारे संवाददाता दीपेंद्र से। दीपेंद्र, इन चुनावों में भाजपा के प्रदर्शन से पार्टी मुख्यालय में खुशी का माहौल होगा, क्या देख रहे हैं आप वहाँ?
2: बिल्कुल कनक, असम और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए अब पार्टी मुख्यालय में इस वक्त जश्न का माहौल शुरू हो चुका है। पार्टी कार्यकर्ता हाथों में झंडा लिए हुए जीत की खुशी में नारे लगा रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। इसके अलावा आतिशबाजी भी हो रही है और ढोल नगाड़े की धुन पर जो है जश्न नाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताऊं कि जो बीजेपी के पार्टी के नेता हैं और कार्यकर्ता है, इस जीत को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और भाजपा के सुशासन मॉडल पर जनता के भरोसे को बता रहे हैं। रुझानों के अनुसार बीजेपी पहली बार जो है पश्चिम बंगाल में सरकार बनाती हुई दिख रही है, वही लगातार तीसरी बार असम में सरकार बनाएगी। और आपको बता दूं कि शाम में प्रधानमंत्री मोदी पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे और पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उनके स्वागत के लिए पार्टी मुख्यालय में तैयारियां चल रही हैं। जी,
1: जानकारी के लिए धन्यवाद दीपेंद्र। भारत ने लिपुलेख दर्रे पर नेपाल के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि दर्रा वर्ष 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का पुराना मार्ग है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत लगातार कहता रहा है कि ऐसे दावे अनुचित और ऐतिहासिक तथ्यों से परे हैं। नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई है। नेपाल ने कहा है कि यह क्षेत्र उसके अधिकार में आता है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 159 अंक की बढ़ोतरी के साथ 77,073 पर, जबकि निफ्टी 58 अंक की वृद्धि के साथ 24,056 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मुंबई में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से देश भर में आज से अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मना रहा है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी जीत की ओर अग्रसर। 293 सीटों में से 192 सीटों पर आगे, तृणमूल कांग्रेस की 95 सीटों पर बढ़त। असम में भाजपा तीसरी बार सत्ता में आने को तैयार। तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बनने विजय की पार्टी TVK की अपने पहले ही चुनाव में जबरदस्त सफलता। सत्तारूढ़ DMK पार्टी तीसरे स्थान पर, मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन पीछे चल रहे हैं। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF स्पष्ट बहुमत की ओर। पुदुचेरी में NDA की सत्ता में फिर वापसी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने त्रिपुरा, नागालैंड और गुजरात में एक एक सीट जीती। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Swanee FM Rainbow 107.1 MHz Musically Yours.
1: Musically Yours 107.1 FM Rainbow पर 5:02 का वक्त हो गया है और यहाँ पर शुरू होने वाला है लव यू जिंदगी. लेकिन आज लव यू जिंदगी लेकर हम अकेले नहीं आए हैं, हमारे साथ हमारी साथी प्रियदर्शनी भी है. गुड इवनिंग.
2: गुड इवनिंग.
1: कैसी
2: हैं? नमस्ते आदाब. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. मैं हूँ प्रियदर्शनी और आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो मुंबई, जहाँ हम हैं म्यूजिकली योर्स.
1: यस, और म्यूजिकली योर्स में जब मैं आती हूँ तो हम लोग जो है वो गेम खेलते हैं. गानों वाला डमशराज आज होने वाला है प्रियदर्शनी और मैं. आप लोगों को क्लू देंगे और आपको जो है वो गाने पहचानने हैं. बस इस गाने के उस पार जो है वो शुरू हो जाएगा खेला हमारा. और फिलहाल के लिए आशा जी की आवाज़ में सुंदर सा गाना जो है वो प्ले कर चुकी हूँ मैं ऑलरेडी. और रहमान साहब की कॉम्पोजिशन है रंगीला फिल्म का, महबूब साहब का लिखा हुआ. इसे सुने और लौट कर आएं FM रेनबो म्यूजिकली यॉर्स.

0: ऑलराइट 107.1 एफएम रेनबो पर 5:08 का वक्त हो गया है. लव यू जिंदगी पर आप लोग बने हुए हैं शिल्पा और प्रियदर्शनी के साथ. और अब यहाँ पर हम गानों वाला डमशराज जो है वो खेलने वाले हैं. और प्रियदर्शनी भी एकदम पूरी कमर कसकर कुर्सी की पेटी बांधकर जो है वो बैठी हुई है क्लू आपको देने के लिए,
1: क्योंकि हमारे लिसनर्स के साथ मैं भी खेलने वाली हूं.
0: यस, तो सबसे पहला क्लू जो है वो आता है कि फिल्म का नाम थ्री वर्ड्स का है जिसमें से एक वर्ड इंग्लिश का है.
1: जी
0: ठीक है. फिल्म में एक हीरो है और तीन हीरोइन है. और अभी के आज की तारीख में कोई भी हीरोइन जो है वो बॉलीवुड में एक्टिव नहीं है, पर हीरो जो है वो सुपरस्टार है.
1: अच्छा
0: ठीक है. इसके अलावा गाना जिस हीरोइन पर फिल्माया गया है उनका नाम जो है वो एक फूल के ऊपर है.
1: अच्छा.
0: हाँ
1: अच्छा, तो मैं भी अब इस खेल में जुड़ गई हूँ, तो मैं भी एक दो क्लूज हमारे लिसनर्स को ऑफर करना चाहूंगी.
0: यस.
1: जबकि मैं ये लिसनर्स को बता दूं कि मुझे भी इसका आंसर नहीं पता है तो मैं क्लूज तो ऑफर कर रही हूँ पर मैं खुद भी गेस कर रही हूँ और अभी तक मेरे दो गेसेस गलत हो चुके हैं.
0: ओके, तो अभी आगे के क्लू तो बताएं.
1: बिल्कुल. पहला क्लू है कि गाना हसीन वादियों में शूट हुआ है.
0: यस.
1: जो कि हमारी हिंदी फिल्मों की एक बहुत प्यारी पहचान है. हमें हसीन वादियों से बहुत प्यार है. और दूसरा क्लू है कि इसके सिंगर्स हैं सोनू निगम और अलका याग्निक. इनकी आवाजें इस गाने में यूज हुई हैं.
0: तो

0: बॉम्बे जयश्री की आवाज में ये गाना सुना। 5:19 का वक्त हो गया है, लव यू जिंदगी चल रहा है प्रिय दर्शनी और शिल्पा के साथ, और यहाँ पर गानों वाला डमशरास खेला जा रहा है। यस, तो कुछ लोगों के जवाब आ गए हैं, लेकिन फिल्म का नाम कुछ ने पहचाना है, गाना जो है वो अब तक गेस नहीं करा है, तो एक मौका छोटा सा 3 मिनट का, क्योंकि 3 मिनट का गाना जो है वो हमने निकाल के रखा है, तो एक मौका प्रियदर्शनी और मिलना चाहिए, नहीं सबको?
1: हाँ हाँ, मुझे भी मिलना चाहिए। मैंने अभी तक गाना गेस नहीं किया है, मैं गलत पे गलत जवाब दिए जा रही हूँ, पर आई थिंक को आरजे होने का ये फायदा है।
0: तो फटाक से बता देते हैं कि देखो, फिल्म का नाम 3 वर्ड्स का है, उसमें से एक शब्द जो है वो इंग्लिश का है। फिल्म में एक हीरो, 3 हीरोइन है, और तीनों हीरोइन फिलहाल ऐसे बॉलीवुड में बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, एक है जो थोड़ी बहुत है, लेकिन दो तो बिल्कुल ही नहीं है। हीरो जो है वो सुपरस्टार है, और काफी अच्छा उनका मतलब पूरी फैमिली ही फिल्मी बैकग्राउंड वाली है। गाना जिस हीरोइन पर फिल्माया गया है उनका नाम एक फूल

0: के ऊपर है।
1: और गाना हसीन वादियों में शूट हुआ है, गाना सोनू निगम और अलका याग्निक ने गाया है। और
0: एक हम क्लू और ऐड कर रहे हैं,
1: बिल्कुल, और इससे और ज़्यादा मदद मिल जाएगी सबको, होपफुली मुझे भी, कि हीरोइन का नाम जो फूल पर है वो फूल हमारे यहाँ कश्मीर में ही सबसे ज्यादा मिलता है।
0: यस, तो अब पहचानिए कौन से गाने की बात हो रही है। 8657661071।

0: ऑलराइट 107.1 एफएम रेनबो पर 5:24 का वक्त हो गया है. लव यू जिंदगी पर बने हुए हैं आप सभी शिल्पा और प्रियदर्शनी के संग. और यहाँ पर क्या चल रहा है?
1: खेला चल रहा है.
0: खेला चल रहा है गानों का. और सही जवाब जो है काफी मशक्कत के बाद कुछ लोगों ने जो है वो दे दिए हैं. अंकित ने राइट आंसर दिया है. प्राशिक बोरकर ने सही जवाब जो है दिया है. पंकज मोहोड़ जी ने, नितिन ने, सारिका जी ने, गजानन शिंदे जी जो है वो उलझे हो गए हैं, बोल रहे हैं पता नहीं जो है वो समझ नहीं आ रहा. ओके, तो गाने की थोड़ी सी धुन हम सुनवा देते हैं ताकि लोगों को जो है वो अंदाजा है हो जाए कि कौन सा गाना है. याद आया ये दिलीप जोशी और आयशा टाकिया
1: जी,
0: और एक और हीरोइन
1: सोहा अली खान
0: और हीरो जो है शाहिद कपूर. दिल मांगे मोर उसका गाना जो है वो यहाँ पर प्ले हो चुका है, लेकिन ये हम पूरा सुनाएंगे आपको. उसके पहले अगले गाने के क्लू जो है वो दे देते हैं कि फिल्म का नाम एक वर्ड का है. इसमें जो है वो दो हीरो और दो हीरोइन हैं, लेकिन गाने में दोनों हीरोइन नहीं हैं. पिक्चराइज जो है वो किसी एक मॉडल के ऊपर जो है वो आप उसको कैमियो कह लो, स्पेशल अपीयरेंस कह लो, तो वैसा है. लेकिन ये फेमिना मिस इंडिया की थर्ड रनरअप जो है वो रही थी. अब साल बता देंगे तो कैसी कर लेंगे तो गूगल कर लिया जाएगा. और गाना जो है अभिजीत और अनु मलिक की.

0: आवाज में है, कौन से गाने की बात हो रही है। और इसमें जो दो हीरोइन दो हीरो हैं, वो आज की तारीख में चारों के चारों जो है वो सुपरस्टार हैं। कौन से गाने की बात हो रही है, 8657761071 के हमारा व्हाट्सएप नंबर है, फटाफट से भेज दें। और फिलहाल प्रियदर्शनी कुछ कहना, एकदम खोई हुई है
1: क्योंकि फिर से मुझे लग रहा है कि लोग एकदम जद्दोजहद में लग जाएंगे,
0: तो लगने देते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: चलिए सोनू जी और अलका जी आप लोगों के लिए ला रहे हैं ये गाना।

0: 107.1 FM मुंबई रेनबो, जहां हम हैं म्यूजिकली योर्स, और ये है लव यू जिंदगी, जहां हम खेल रहे हैं गानों वाला शरेड्स.
1: गाने वाला डबशराज चल रहा है और 5:36 का वक्त हो गया है. ये सुंदर सी आवाज़ आपने सुनी प्रियदर्शनी की, और मैं हूँ आप लोगों के साथ में शिल्पा. और सही जवाब जो है वो अब तक नहीं आया है प्रियदर्शनी. और पिछले हफ्ते ऐसा हो गया था ना कि ऐसे सारे लिसनर्स ऐसे फटफट जो है वो गेस कर रहे थे, और मुझे ऐसा लग रहा था अभी भी देखिए विरासत प्राशिक विरासत नहीं है. ओके, लोग अभी भी तुक्का जो है वो मार रहे हैं. तो एक क्लू हमने जो है वो और ऐड किया है.
0: अच्छा, हाँ तो, पहले तो हमने क्लूज दिए थे कि ये जो फिल्म की
1: फिल्म का नाम एक
0: फिल्म की एक हीरोइन है वो फेमिना मिस इंडिया थर्ड रनर अप थी.
1: हीरोइन नहीं है, हीरोइन नहीं, वो जिस गाने में
0: अच्छा
1: जो गाना शूट किया, जिस गाने की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें जो है वो स्पेशल अपीयरेंस जो है वो उन्होंने दिया है. फिल्म का नाम एक वर्ड का है
0: जी,
1: और इसमें दो हीरो और दो हीरोइन जो है और वो चारों बहुत बड़े स्टार हैं आज की तारीख में. और अनु मलिक और अभिजीत दाने जो है वो गाया है. और चलिए एक हम और ऐड कर देते हैं इसमें क्लू कि फिल्म का नाम ऐसा है, बहुत हिट फिल्म रही है, उसके सारे गाने भी जो है वो बहुत हिट रहे हैं. तो फिल्म का नाम ऐसा है कुछ जो हर एक इंसान अपनी जिंदगी में चाहता है, मतलब चाहता ही चाहता है वो, चाहे छोटा बच्चा हो, एडल्ट हो, बड़े बुजुर्ग हो, वो एक चीज अगर हो तो इंसान बड़ा खुश रहता है. तो अब फिल्म का नाम आपको गेस करने में बहुत आसानी होगी, और चूंकि जैसा हमने कहा कि इसमें एक स्पेशल अपीयरेंस था जो उस दौर की जो है वो मॉडल रही, और बहुत सारी उन्होंने फिल्में भी करी, एक्ट्रेस भी रही, तो इससे आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि बाकी सारे गाने जो है वो मेन लीड के ऊपर जो है वो पिक्चराइज कर रहे हैं. अब बताइए भाई कौन सा गाना है. 8657 6 1 0 7 1, ज्यादा समय नहीं है, ये 3 मिनट का गाना आप सुने, और फिर इसके बाद जो है वो राइट आंसर मैं आपको बताने वाली हूँ.

आज ऐसा लग रहा है कि मैं जो है वो मेहनत कर कर आई हूँ और यहाँ पर बहुत कम जवाब जो है वो आए हैं सही। ऐसा बहुत रेयर होता है कि जहाँ पर लोग गेस ना कर पाए। पहले तो ना मैं थोड़ा म्यूजिक आपको सुनाती हूँ, शायद आप गेस करें, क्योंकि फिल्म का नाम तो बहुत लोगों ने जो है वो पहचान लिया। इनफैक्ट किन लोगों ने सही पूरा पहचाना है वो है सारिका जी, नितिन जी, ये दो राइट आंसर है। इसके अलावा फिल्म का नाम जो है वो पहचान लिया है अंकित ने, और पंकज मोहर जी जो है वो नहीं, इश्क कमीना नहीं है पंकज, ये देखिए। इसका म्यूजिक भी जो है

0: अनु मलिक और अभिजीत दा की आवाज में इश्क का ये गाना तो उन्हें सुना टन टन। यस 5:00 काफ़ी शोर शराबा था एंड में 5:52 का वक्त हो गया है। लव यू जिंदगी पर बने हुए शिल्पा और प्रियदर्शनी के संग और यहाँ पर रेडियो वाला नहीं गानों वाला डमशराज रेडियो पर चल रहा है। और सही जवाब जो है थोड़ा सा म्यूज़िक में आप लोगों को सुना देती हूँ, हालांकि ऐसा मुझे लगता है कि म्यूज़िक से शायद गेस नहीं कर पाएंगे जिन लोगों ने नहीं पहचाना है। देखो पहचानने वाले इतने में समझ गए होंगे कौन सा गाना है। अभिजीत दा, अलका याग्निक, सोनू निगम की आवाज़ में ऑफकोर्स, हंगामा फिल्म से। और राइट आंसर दिया है गजानन शिंदे जी ने, प्राशिक बोरकर ने, अंकित ने, प्रणव शिंदे ने, नितिन ने और सारिका जी ने। शुक्रिया आप सभी का। और किसी का आया है आज का क्लू सुन के, क्या ये प्राशिक बोरकर जो है वो क्या बोल रहे हैं भाई? अच्छा ओके, कुछ तो मैसेज जो है वो इन्होंने किया है। चलिए अभी अगले गाने के क्लू, चूंकि आज हमारे पास जो है वो 6:05 का समय है प्रियदर्शनी, तो हम उसका इस्तेमाल जो है वो पूरा करेंगे भरपूर। तो अगले गाने के क्लू जो है वो आप दें और उसके बाद मैं कंटिन्यू करूँ।
1: जी, तो जो अगला गाना है उसका पहला क्लू है कि ये गाना हल्दी की रस्म में
0: होता है।
1: यस। और

0: इस गाने को शूट एक सुंदर से गार्डन में किया गया है,
1: जैसे शादियों वाला
0: शादियों
1: होता है
0: में
1: ना.
0: होता है
1: ओके
0: है.
1: ओके. और फिल्म का नाम जो है वो दो शब्दों वाला है और गाना सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल जी की आवाज़ में है. और बहुत बड़ा क्लू अगला आ रहा है कि ये अनुभव सिन्हा की डायरेक्टेड फिल्म है जो कमर्शियली बहुत सक्सेसफुल रही थी. ये बहुत बड़ा क्लू है अपने आप में क्योंकि अनुभव सिन्हा एक ऐसे डायरेक्टर रहे हैं जिनकी फिल्में ऐसे नहीं है कि बहुत सारी आई हैं. और ये अपने आप में है क्योंकि उनकी फिल्में बहुत सिलेक्टेड रही हैं
0: जी,
1: है ना. तो
0: जी.
1: उसमें जो है याद करिए क्योंकि ऐसी कोई फिल्म जिसमें हल्दी की यू नो रस्म हो उनकी वो भी फिल्म रेयर है.
0: बिल्कुल.
1: तो ये कौन सी फिल्म और कौन से गाने की बात हो रही है. 8657661071 इस नंबर पर जो है वो बताएं. और फिलहाल अभी के लिए जिस गाने को आप लोगों ने पहचाना वो यहाँ पर प्ले हो चुका है, हंगामा का, नदीम श्रवण जी की कॉम्पोजिशन पर. सुने और लौट कर आए म्यूजिकली योर्स पर.

0: आप सुन रहे हैं 107.1 FM मुंबई रेनबो, म्यूजिकली योर्स।
1: यस, 6 बजे का वक्त हो गया है और सही जवाब बहुत लोगों ने दिए हैं। आई एम सो सॉरी पंकज जी, आपका नाम पिछले गाने में रह गया था, जो गाना आपने अभी सुना इसका सही जवाब पंकज जी ने भी दिया था, लेकिन वो कभी कभी होता है ना, ऐसे बहुत सारे आते हैं जवाब तो नीचे नाम छूट जाता है। ओके, तो अभी के लिए भी इन्होंने राइट आंसर दिया है प्राशिक बोरकर, पंकज मोहोड़ जी, इसके अलावा अरविंद कुलकर्णी, प्रणव शिंदे जी, नितिन जी, एक और, अच्छा एक प्रणव शिंदे हैं और एक प्रवीण जी हैं। अंकित ने भी राइट आंसर जो है वो दिया है, और सारिका जी, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का जिन्होंने एकदम एक झटके में जो है वो तुम बिन का गाना, ये कैसे मिस हो सकता है, मतलब सारे गाने हैं ना प्रियदर्शन जी बहुत देखते हैं।
0: यस,
1: तो सोनू निगम और अनुराधा जी की आवाज़ में प्ले हो चुका है और ठीक 6:05 पर आप सुन सकेंगे समाचार नागपुर से, और 6:15 पर मुलाकात होगी अंदाजे भैया के साथ।

0: बात निकली है तो बड़ी दूर तक जाएगी।
1: पगली जीपीएस फॉलो करना, नहीं तो गुम हो जाएगी।
0: अगर गुम हो भी जाओ तो कोई बात नहीं।
1: बिल्कुल, क्योंकि पंछियों के पास भी कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी वो ढूंढ लेते हैं अपनी मंजिलें।
0: हाय, ये है एफएम रेनबो 107.1। यूं ही खट्टी मीठी बातों से जीत लेंगे आपका मन,
1: क्योंकि हम हैं म्यूजिकली यर्स।

0: 101 FM रेनबो मुंबई, शिल्पा और प्रियदर्शनी के साथ, और ये है अंदाजे बयां।
1: यस, और 6:22 का वक्त हो गया है और अंदाजे बयां में अब हम खेलने वाले हैं वो खेल जिसमें थोड़ी सी हिंदी जो है वो सबकी अच्छी हो जाती है। तो गाने की क्लिष्ट हिंदी की जाती है, शुद्ध हिंदी आपको बताई जाती है और आपको गाना जो है वो पहचानना होता है। ठीक है
0: जी,
1: तो पहला सॉन्ग आ रहा है नयनों की गुप्त विनिमय चेष्टा, जो पूर्व काल में स्वभाव थी अब विलुप्त हो गई, तब मम प्रेम की जो अवस्था उदित हुई थी वह अब क्षीण हो गई, जगत की तो व्याकुलता कदापि ना थी, अब तुम्हारी व्याकुलता भी न्यून हो गई। कौन सा गाना है ये पहचाने, और 8657661071 इस नंबर पर जो है वो मैसेज करें। एक बार और रिपीट कर देती हूँ क्योंकि वो ये वाकई में क्लिष्ट है तो एक बार में शायद रजिस्टर जो है वो नहीं होगा। नयनों की गुप्त विनिमय चेष्टा, जो पूर्व काल में स्वभाव थी अब विलुप्त हो गई, तब मम प्रेम की जो अवस्था उदित हुई थी।

वह अब क्षीण हो गई, जगत की तो व्याकुलता कदापि ना थी, अब तुम्हारी व्याकुलता भी न्यून हो गई। पहचाने और मैसेज करें। फिलहाल सोनू निगम और मधुश्री की आवाज़ में अगला गाना प्ले हो चुका है, जोधा अकबर फिल्म से, बड़ा खूबसूरत है, बड़े दिनों बाद इनफैक्ट प्ले हो रहा है। जावेद अख्तर साहब का लिखा हुआ, रहमान साहब की कॉम्पोजिशन, पर सुने और लौट कर आए। म्यूजिकली योर्स।

0: नोएडा सेठ और अमिताभ भट्टाचार्य की आवाज, जावेद अख्तर साहब का लिखा हुआ ये गाना है अमित त्रिवेदी की कंपोजिशन पर वेक अप सिड से 6:35 का वक्त जो है वो हो गया है और राइट आंसर बहुत कम लोगों के जो है वो आए हैं और ये कमाल की चीज़ इसलिए मुझे लग रही है क्योंकि पिछले हफ्ते तक ना खेल बड़ा आसान सा होता चला जा रहा था, तो इस हफ्ते जो है थोड़ी हिंदी की मात्रा जो है वो बढ़ाई गई गानों में। और गाना जो है वो कौन सा था जिसकी हिंदी आपको बताई गई थी, वो ये वाला था। याद आ गया होगा, अगर मैं उसको रिपीट करूंगी तो आ जाएगा, पर अभी रिपीट नहीं कर रहे हम। ये गाना भी मैं आपको पूरा जो है वो सुनाऊंगी। सही जवाब जो है वो प्राशिक बोरकर और नितिन जी, बस दो लोगों का जो है वो आया है। अंकित ने भरसक प्रयास किया, प्रणव शिंदे जी ने भी बहुत कोशिश करी लेकिन जो है वो नहीं पहचान पाए। पंकज जी और प्रवीण जी ने गलत जवाब दिए हैं दोनों ने, एक जैसे राइट मतलब दिए हैं। आंखों की गुस्ताखी है, ये कैसे होगा लेकिन मतलब ये कौन सी लाइन को घुमाकर जो है वो कहाँ पैच किया गया है जो आंखों की गुस्ताखी जो है वो आपको समझ आ रहा है। एनीवेज, अगला गाना जो है उसकी हिंदी जो है वो अब बताएंगी प्रियदर्शनी।
1: तो जो अगला गाना है उसकी एकदम शुद्ध हिंदी में कुछ ऐसा है कि कैसा आनंद है इस लयात्मक प्रवाह में, कैसा आनंद है इस लयात्मक प्रवाह में, मनोरम वह श्यामल ढलान, ये समीर मंद मंद गुनगुनाते हुए पूछते हैं तुम कहाँ हो, क्या तुम पुष्पों एवं कलिकाओं में विद्यमान हो अथवा मेरे स्वप्नों की विथियों में। मुझे तो ऐसा लग रहा है शिल्पा कि आपकी ये हिंदी ट्रांसलेशन पढ़कर जानकर समझकर लोगों को हिंदी क्लासेस के साथ कर लेना तो अच्छी भली हिंदी की प्रैक्टिस अभ्यास हो रहा है।
0: नहीं, एक्चुअली में हो रही है, मतलब कई सारे ऐसे शब्द हैं प्रियदर्शनी जो हम बहुत नॉर्मली यही होता है ना, हम वही शब्दों का प्रयोग करते हैं जो हम सुनते रहते हैं इर्द गिर्द ऐसा, तो कई सारे ऐसे निकल कर आ रहे हैं जो हमने सुने ही नहीं, मतलब बहुत सालों से नहीं सुने हैं और जब वो हमारे कानों में पड़ते तो हमें याद आता है यार ये भी तो एक सुंदर शब्द है, हम इसका प्रयोग जो है वो करें और हमें वाकई में हिंदी बोलने का प्रयत्न जो है वो करना चाहिए। मतलब बड़ी सुंदर लगता है अगर सारे लोग इसी तरह से जो है वो बातचीत करें तो।
1: और आपके क्लूज और इन गानों को पहचानने की जो ये सबकी चेष्टा है इसमें लोग इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं, लोगों की भाषा अपने आप अच्छी हो रही है,
0: वाकई में हो रही है। और इसके लिए जो है हम सारे लिसनर्स को धन्यवाद करेंगे क्योंकि वो भी एक पूरी कोशिश करते हैं, पूरा इन्वॉल्वमेंट जो है वो दिखाते हैं। तो अभी फिलहाल जो है वो पहचानिए कि कौन सा गाना है जो प्रियदर्शनी ने बताया। मैं चाहूँ तो एक बार और रिपीट कर देती हूँ ताकि वो बोलते ना कठिन है तो एक बार में शायद समझ नहीं आता कभी कभी। तो कैसा आनंद है इस लयात्मक प्रवाह में, मनोरम वह श्यामल ढलान, ये समीर मंद मंद गुनगुनाते हुए पूछते हैं तुम कहाँ हो, क्या तुम पुष्पों में कलिकाओं में विद्यमान हो अथवा मेरे स्वप्नों की वीथियों में। कौन सा गाना है बताएं।

0: 107.1 FM रेनबो पर 6:51 का वक्त हो गया है, अंदाज़े बयां चल रहा है और प्रियदर्शनी सही जवाब जो है वो कुछ लोगों के आ गए हैं और ये वाकई में कठिन गाना था। मैम थोड़ा सा म्यूजिक हम सुना देते हैं ना,
1: सुना दीजिए।
0: ये देखो कौन सा वाला गाना है, इसके ऊपर अगर मैं इसके लिरिक्स हिंदी वाले बताऊँ कैसा आनंद है इस लयात्मक प्रवाह में, मनोरम वह श्यामल ढलान, ये समीर मंद मंद गुनगुनाते हुए पूछते हैं तुम कहाँ हो। ये सॉन्ग जो है वो पूरा मैं सुनाऊंगी, लेकिन सही जवाब जो है वो किन लोगों के आए हैं, अमिता जाधव का, प्राशिक बोरकर का, कोशिश हालांकि बहुत लोगों ने जो है वो की है, प्रवीण जी ने भी राइट आंसर जो है वो दिया है और सारिका जी का अभी अभी बस एक सेकंड पहले जो है वो मैसेज आया है। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। और अब यहाँ पर पहले ही गाना जो है वो आप सुन लें और फिर लौट कर आते हैं हम लोग दोनों, सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में है और स्वानंद किरकिरे साहब का लिखा हुआ है, शांतनु मोहित्रा ने कमाल का म्यूजिक जो है वो दिया है,
1: एक क्लासिक एल्बम है।
0: यस यस यस, तो सुने
1: बिल्कुल।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली
1: आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो मुंबई और अभी आप सुन रहे थे मराठी में समाचार
2: और ये यहाँ पर यस और अब दो लड़कियां जब बात करती हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो क्लैश ना करें है ना?
1: बिल्कुल और ये है वक्त हम तुम का जहां हम बजाते हैं फरमाइशी गीत और आज शिल्पा और प्रियदर्शनी मिलकर बजाएंगे आपके पसंदीदा कुछ गाने
2: यस और फरमाइश जो है ऑलरेडी बहुत सारे लोगों की आ चुकी है तो हम पहली रिक्वेस्ट जो है वो प्ले करने वाले हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में लेकिन अगर आपको कुछ भेजना है तो 8657661071 पर भेज सकते हैं लेकिन ऑप्शन के साथ है ना
1: बिल्कुल
2: ताकि हमारे लिए भी ऑप्शन बचे कि कौन सा गाना जो है वो पिक करना है क्योंकि एक शो का रिदम होता है ना तो अभी उसके हिसाब से अगर हम प्ले करें तो सारे सुनने वालों को भी मजा आता है और कई सारे ऐसे गाने भी होते हैं जो हम बहुत बार आप रिपीट करते हैं उन्हीं गानों की रिक्वेस्ट तो आप जब ऑप्शन में भेजते हैं तो वो भी एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होती है यस तो अभी जो है वो अरिजीत सिंह की आवाज में सुनते हैं खैरियत

0: श्रेया घोषाल की आवाज़ में गाना आप लोगों ने सुना सांवरिया फिल्म से। 7:20 का वक्त हो गया है। हम तुम पर बने हुए हैं आप सभी प्रियदर्शनी और
1: शिल्पा के साथ
0: और ये फरमाइश जो है वो की थी प्रणव शिंदे जी ने। और इसके पहले जो सॉन्ग हमने प्ले करा था वो था सुशील यादव जी और रेनू यादव जी की रिक्वेस्ट पर। और अब जो है वो अगली गाने की टर्न जो है वो आने वाली है और वो गाना जो है हम प्ले करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है अगर किसी को कोई गाना रिक्वेस्ट करना है
1: तो हमें मैसेज भेजिए 8657661071 पर।
0: यस, और फिलहाल के लिए उदित जी की आवाज़ में ये रिक्वेस्ट जो है वो किसने की है, रुको इतने सारे मैसेजेस आ गए हैं ना। तो यस, ज्योति घाटोल जी ने ये गाना मांगा है। सुने, लौट कर आए म्यूजिकल यॉर्स पर।

0: जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात हाऊस लिस्टिंग आणि हाऊसिंग सेन्सस म्हणजे आपल्या आवाजाची गणना होईल. तुमच्या सहभागाने हे यशस्वी करूया. प्रत्येक व्यक्ती जोडली गेले पाहिजे, प्रत्येक घर जोडले गेले पाहिजे आणि देशाने पुढे गेले पाहिजे. जनगणना 2027 आपली आहे. जनगणना आपली आहे.
1: म्यूजिकल यॉर्स 107.1 एफएम रेनबो पर 7:32 का वक्त हो गया है. हम तुम पर प्रिय दर्शनी और शिल्पा आप लोगों के साथ बने हुए हैं. और किसकी रिक्वेस्ट जो है वो प्ले हुई है
2: अभी. हमने इंग्लिश विंग्लिश का टाइटल ट्रैक सुना जो कि अजय साखरे जी की फरमाइश थी.
1: यस, और शिल्पा का नाम जो है वो इस गाने से जुड़ा हुआ है, शिल्पा राव का. ओके, चलो अभी जो है हंस राज की आवाज़ में हम अगला गाना ओ माय गॉड 2 का प्ले कर रहे हैं जो प्रवीण जी ने जो है वो मांगा है. और अगर आपको कुछ सुनने का मन कर रहा है तो प्लीज़ ऑप्शन के साथ भेज दीजिए 8657661071 और कोशिश करिएगा एटलीस्ट 3 गाने जो है वो आप भेजें. और फिलहाल के लिए प्रवीण जी की फरमाइश पर ये गाना जो है वो प्ले हो चुका है.

0: अंकित की रिक्वेस्ट पर हुआ ये गाना प्ले, एकदम जो है वो विदाई के मूड में चले गए सारे के सारे, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, 7:40 का वक्त हो गया है और हम तुम पर बने हुए हैं आप सभी प्रियदर्शनी और शिल्पा के संग।
1: जी,
0: और,
1: बिल्कुल।
0: और यहाँ पर जो है वो अब बिना देर करे अगली रिक्वेस्ट जो है वो प्ले कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों के नाम है इनफैक्ट इस गाने के लिए। तो ये पहले गाना आप सुन लें और फिर एक कमर्शियल ब्रेक लेंगे और फिर एक और गाना हम आपको सुनाएंगे और फिर लौट कर आकर नाम बताएंगे।

0: सोनू निगम और अनुराधा जी की आवाज़ में ये गाना सुना पुकार फिल्म से, रहमान साहब की कॉम्पोजिशन पर, मीना जी की फरमाइश पर। और इसके पहले जो सॉन्ग सुना था आपने, भोली सी सूरत, पंकज मोहर जी, हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी और सीता और गीता, इनकी रिक्वेस्ट पर हुआ था प्ले।
1: आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।
0: यस और अभी यहाँ पर हम लोगों को इजाज़त लेनी होगी। ठीक 8 बजे विद्यासागर आप लोगों के लिए लेकर आ जाएंगे इंटरनेशनल म्यूज़िक। और यहाँ पर एक नाम तो गुम हो गया लेकिन गाना जो है वो हमने निकाल कर रखा है। और वो नाम बहुत पीछे आई गेस चला गया, किसका है रिक्वेस्ट पता नहीं, लेकिन बड़ा सुंदर सॉन्ग जो है वो इन्होंने मांगा है, लता जी की आवाज़ में है, और इसको हम प्ले करेंगे। और मेरी आपकी मुलाकात जो है वो अब 5 जून के जो है वो होने वाली है, और प्रदर्शनी की मुलाकात सरप्राइज विजिट जो है वो इनका होगा जो आप लोगों को बिल्कुल सरप्राइज की तरह मिलेगा। और अभी जाते जाते जो है वो ये गाना छोड़कर जा रहे हैं, सुने और बने रहे म्यूजिकली ऑस पर।
1: बिल्कुल।

0: पुदुचेरी में एनडीए ने सत्ता बरकरार रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल, असम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरलम के लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। जीत का श्रेय देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को दिया। कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे ने केरलम में शानदार जीत दर्ज की। अभिनेता से राजनेता बने विजय की टीवी के पार्टी ने तमिलनाडु में शानदार प्रदर्शन के साथ राजनीति की शुरुआत की। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने 4, कांग्रेस ने 2 सीटें जीती। एनसीपी की सुनेत्रा पवार ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की। और चुनाव परिणामों से घरेलू शेयर बाजारों में उत्साह का माहौल। सेंसेक्स 356 अंक बढ़ा और निफ्टी 24,100 अंक के पार। अब समाचार विस्तार से। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में भारी जनादेश के साथ इतिहास रचा है। पार्टी असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। वहीं पुदुचेरी में एनडीए ने सत्ता बरकरार रखी है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे ने केरलम में शानदार जीत दर्ज की है। तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की टीवी के पार्टी ने शानदार प्रदर्शन के साथ राजनीति की शुरुआत की है। 5 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में भाजपा ने 4, कांग्रेस ने 2 सीट जीती है। एनसीपी की सुनेत्रा पवार ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने विधानसभा की 294 सीटों में से 208 सीट पर बढ़त बना ली है और इनमें से 148 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत भी हासिल कर लिया है। ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस 79 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और इनमें से 54 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई है। वाम दल को 1 सीट मिली है और 1 सीट पर आगे है। अन्य को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से पीछे चल रहे हैं। नंदीग्राम सीट से भी शुभेंदु अधिकारी आगे हैं। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 101 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस को 22 सीटों पर बढ़त मिली है और इनमें से वो 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालकुबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा चुनाव जीत गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने जोरहाट सीट से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई को हराया। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वित्री कड़गम टीवी के सबसे बड़े पार्टी के रूप में उभर कर इतिहास रचने जा रही है। टीवी के 107 सीटों पर आगे है और इनमें से वो 84 सीटें जीत भी चुकी है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में सत्तारूढ़ डीएमके और उसके सहयोगी दल 74 सीटों पर आगे हैं और इनमें से वो 51 सीट जीत चुके हैं। एआईएडीएमके और उसके सहयोगी दल 53 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, इनमें से 35 सीट जीत चुके हैं। पीएमके 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। तमिलनाडु में चेन्नई से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी से। जी सुशील, विजय की टीवी के पार्टी की अप्रत्याशित जीत की प्रमुख वजह क्या रही?
1: देखिए लवलीन, जो विजय को सफलता मिली है, उनकी पार्टी टीवीके को सफलता मिली है, ऐसी किसी भी राजनीतिक विश्लेषक को कम से कम चुनाव परिणामों से पहले तक उम्मीद नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से युवाओं के बीच विजय का क्रेज था, उनकी एक ब्रांड इमेज सोशल मीडिया पर वो जिस तरीके से वायरल हो रहे थे और खासतौर पर जिस तरीके से तमिलनाडु में 1 करोड़ से ज्यादा युवा वोटर थे, जिसमें 14 लाख से ज्यादा पहली बार बने वोटर थे, यानी जेंजी हम कह सकते हैं, तो युवाओं का एक जबरदस्त समर्थन मिलता हुआ उन्हें दिख रहा है। इसके अलावा जो जयललिता के निधन के बाद एक तरीके से एक सिनेमाई करिश्मा की उम्मीद तमिलनाडु के वोटरों को हमेशा रही है, सिनेमा के लोगों को उन्होंने हमेशा हाथों हाथ लिया है, चाहे एमजीआर की बात हो या फिर जयललिता की बात हो, तो एक लंबे वक्त तक सिनेमा के प्रति यहां के वोटरों का आकर्षण रहा है और वो इमेज और पुख्ता हुई है विजय के आने के बाद। तो एक तरीके से उन्हें जबरदस्त समर्थन युवा वर्ग से भी मिला और खासतौर पर जो एंटी इनकम्बेंसी यानी जो सत्ता के विरोधी मत थे, उनमें भी उन्होंने एक बड़ी संख्या में मतों को हासिल किया। हम जानते हैं कि 5 साल से ज्यादा जो है सरकार दोबारा रिपीट होने का यहां पर चलन नहीं रहा है, तो उस चलन को देखते हुए डीएमके के खिलाफ जो वोट थे, एंटी इनकम्बेंसी जो वोट थे, वो बड़ी संख्या में उनके पक्ष में गए हैं। तो एक तरीके से उन्होंने पूरे राजनीतिक समीकरण को बदल दिया है और जबरदस्त सफलता हासिल की है। जी लवलीन,
0: धन्यवाद सुशील इस जानकारी के लिए। उधर केरलम में सभी

40 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसके निर्णायक वापसी का संकेत है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आईयूएमएल ने 22 सीटें जीत ली हैं। पूरे राज्य में गठबंधन की स्थिति मजबूत है। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 26 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं, 4 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की सरकार फिर से बनने जा रही है। कुल 30 सीटों में से 28 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की एआईएनआरसी ने 12 सीटें जीती हैं और 2 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि भाजपा ने 4 सीटें

0: जाता है राकेश टोले से। जी राकेश, असम में एनडीए उम्मीदों के अनुरूप लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, यही दर्शाता है कि लोगों ने उनके कार्यों पर विश्वास बनाए रखा है।
1: जी, 2026 के असम विधानसभा चुनाव परिणाम राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाते हैं। देखिए, भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की 102 सीटों के साथ प्रचंड जीत के पीछे मजबूत नेतृत्व, राजनीतिक गठबंधन प्रबंधन और विकास के साथ पहचान की राजनीति के संतुलित उपयोग जैसे कई प्रमुख कारक रहे। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा इस जीत के केंद्रीय सूत्रधार के रूप में उभरे। इस जीत में लक्षित कल्याणकारी नीतियों की भी अहम भूमिका रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास भी एक महत्वपूर्ण कारक रहा। ब्रह्मपुत्र नदी पर बड़े पुलों का निर्माण, सड़क संपर्क में सुधार और नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना ने डबल इंजन सरकार की कार्य क्षमता को जमीन पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया। अवैध घुसपैठ को रोकने और जनसंख्या संतुलन से जुड़े मुद्दों को उठाने की राजनीति मतदाताओं के बीच गहराई से प्रभावी रही। जी
0: धन्यवाद राकेश जानकारी के लिए। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है, ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर।
0: श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणाम लोकतंत्र की जीत है।
2: 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश में गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भाजपा का कमल खिला हुआ है।
2: आप सबको कहा था, गंगा जी बिहार से आगे बहते हुए गंगा सागर तक जाती है। बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और अब पश्चिम बंगाल, आज माँ गंगा के इर्द गिर्द बसे इन राज्यों में बीजेपी एनडीए सरकार है।
0: श्री मोदी ने कहा कि इस बार चुनाव में मतदान के रिकॉर्ड बने और महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक रही।
2: पश्चिम बंगाल में करीब 93% मतदान होना अपने आप में ऐतिहासिक रहा है। असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरलम में भी मतदान के नए रिकॉर्ड बने हैं। इसमें भी महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक रही है। ये भारतीय लोकतंत्र की सबसे उजली तस्वीर बन रही है।
0: भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने भाजपा और एनडीए पर भरोसा जताने और समर्थन देने के लिए लोगों का आभार व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पार्टी के अनगिनत कार्यकर्ताओं के बलिदान, संघर्ष और शहादत का परिणाम है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने केरलम के लोगों को निर्णायक जनादेश के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि केरलम में प्रतिभा है, क्षमता है और यूडीएफ सरकार इन दोनों का सदुपयोग करेगी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव एम ए बेबी ने कहा है कि पार्टी केरलम में जनता के फैसले का सम्मान करती है और राज्य में हार के कारणों का आत्मनिरीक्षण करेगी। और चुनाव परिणामों से घरेलू शेयर बाजार में उत्साह का माहौल है। आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 356 अंक बढ़कर 77,269 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 122 अंक बढ़कर 24,119 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 17 पैसे कमजोर होकर 95.08 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: ये आकाशवाणी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बलों और उद्योग ने बदलती परिस्थितियों का विश्लेषण और समझ विकसित कर ली है। उन्होंने कहा कि देश की तैयारी हमेशा अद्यतन उच्च स्तरीय तथा मानक के अनुरूप रहती है और ऑपरेशन सिंदूर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नॉर्थ टेक सिम्पोजियम के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने भारतीय रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने मूगा रेशम उत्पादन में मिजोरम को राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बनाने की महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत की। श्री सिंह ने दिन में आइजोल के रेमाबॉक क्षेत्र में स्थित सेरिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने रेशम कताई फैक्ट्री का निरीक्षण किया। श्री सिंह ने बताया कि मिजोरम को मूगा रेशम उत्पादन में अग्रणी बनाने के प्रयास जारी हैं। UPI दुनिया के सबसे बड़े भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में उभर कर सामने आया है। UPI से अप्रैल के महीने में 22 अरब 35 करोड़ लेनदेन किए गए। ये 11 अप्रैल 2016 को अपनी शुरुआत के एक दशक बाद दुनिया की सबसे बड़ी भुगतान प्रणाली बन गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद भारत और जमैका के घनिष्ठ संबंध हैं। दोनों ही ग्लोबल साउथ के विकासशील राष्ट्र होने पर गर्व करते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ही देशों ने वैश्विक समुदाय में अपनी अलग पहचान बनाई है। जमैका में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत उत्सवों, खेलों और मुश्किलों के हर पल में जमैका के साथ खड़ा रहा है। प्रसार भारती के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रसून जोशी ने आज नई दिल्ली में सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। उन्हें पिछले सप्ताह प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इससे पहले श्री जोशी मुंबई में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं। मुंबई में IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 179 रन बना लिए हैं। मुंबई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव ने इस वर्ष होने वाली अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान आयोजन के संबंध में योजना बनाने और समन्वित क्रियान्वयन पर विचार विमर्श किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में भारी जनादेश के साथ इतिहास रचा। असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। पुदुचेरी में NDA ने सत्ता बरकरार रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल, असम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरलम के लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। जीत का श्रेय देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को दिया। कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे ने केरलम में शानदार जीत दर्ज की। अभिनेता से राजनेता बने विजय की। टीवी के पार्टी ने तमिलनाडु में शानदार प्रदर्शन के साथ राजनीति की शुरुआत की। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने 4, कांग्रेस ने 2 सीटें जीती। NCP की सुनेत्रा पवार ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की। और चुनाव परिणामों से घरेलू शेयर बाजार में उत्साह का माहौल। सेंसेक्स 356 अंक बढ़ा और निफ्टी 24,100 अंक के पार। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने अभी तक विधानसभा की 293 सीटों में से 197 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस को 68 सीटों पर जीत हासिल हुई है, वाम दल को 1 सीट मिली है, अन्य को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से 15,000 से अधिक मतों से हार गई हैं। नंदीग्राम सीट से भी शुभेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस को 21 सीटों पर बढ़त मिली है और इनमें से वो 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर इतिहास रचने जा रही है। टीवी के ने 103 सीटें जीत ली हैं और वो 4 सीटों पर आगे है। टीवी के अध्यक्ष विजय ने अपनी दोनों सीटों परम्बूर और तिरुचि में जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में सत्तारूढ़ डीएमके के 56 सीट जीत चुकी है। एआईएडीएमके 45 सीट जीत चुकी है। कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की और भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर आगे चल रही है। कोलाथूर सीट से मुख्यमंत्री और दविड़ मुनेत्र कड़गम के उम्मीदवार एमके स्टालिन को तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी के बीएस बाबू ने 8,795 मतों के अंतर से हराया। केरल में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसकी निर्णायक वापसी का संकेत है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML ने 22 सीटें जीत ली हैं। पूरे राज्य में गठबंधन की स्थिति मजबूत है। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM ने 26 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं, 4 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस AINRC के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की सरकार फिर से बनने जा रही है। कुल 30 सीटों में से 29 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की AINRC और सहयोगी दलों को 17 सीटें मिली हैं। भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। AIADMK को 1 सीट मिली है, कांग्रेस को 1 सीट मिली है, DMK को 5 सीटें मिली हैं। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। गुजरात की उमरेठ सीट पर भाजपा के उम्मीदवार हर्षद भाई गोविंद भाई परमार चुनाव जीत गए हैं। महाराष्ट्र की राहुरी सीट पर भाजपा के अक्षय शिवाजीराव करदिले को जीत मिली है। नागालैंड में कोरीडांग सीट पर भाजपा के दाओचियर इमचेन विजयी रहे हैं। त्रिपुरा में धर्मनगर सीट से भाजपा के जाहर चक्रवर्ती को जीत मिली है। कर्नाटक में बागलकोट सीट से कांग्रेस के उमेश हुलप्पा मेदी को जीत मिली है। कर्नाटक में ही दावणगेरे दक्षिण सीट से कांग्रेस के समर्थ सामनूर मल्लिकार्जुन चुनाव जीत गए हैं। महाराष्ट्र में बारामती सीट पर उपचुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुनेत्रा अजीत पवार विजयी रही हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि ये चुनाव परिणाम लोकतंत्र की जीत है। IPL क्रिकेट में मुंबई में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 229 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 198 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी।

नमस्कार, वेलकम ऑन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ यानी आकाशवाणी रेनबो। और जैसा मैंने किया था आपसे वादा कि जल्द जा रही हूँ और लौटूंगी फौरन, लीजिए आ गई हूँ मैं आपके फेवरेट शो के साथ जिसका नाम है रंगे महफिल। मैं हमेशा कहती हूँ कि जिंदगी का सुकून अगर चाहिए तो आ जाइए गजलों के इस सफर पे हमारे साथ। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो। और इस प्रोग्राम की पहली गजल मैं प्ले कर रही हूँ जगजीत सिंह जी की आवाज में, कोई फरियाद। इतनी खूबसूरत सी गजल है, इसे जितना सुने उतनी ज्यादा बेहतरीन हो जाती है। और कहते हैं कि कोई भी म्यूजिक, संगीत, गायकी ज्यादा बेहतर, खूबसूरत या फिर खास तब हो जाती है जब सुनने वाला उसे दिल से सुन रहा हो। तो आइए इस गजल को हम सुनते हैं बहुत ही दिल से, क्योंकि मेरी बहुत ही फेवरेट ये गजल है, इसलिए मैंने प्ले की है आपके लिए। इसे सुनिएगा, एंजॉय करिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप।

आशा जी की खूबसूरत सी आवाज में गजल अभी आप सुन रहे थे। उमराव जान मूवी से क्या मूवी थी, क्या अदाकारी थी, रेखा जी ने तो क्या कमाल की एक्टिंग की थी, और म्यूजिक और गायकी, मतलब पूरी फिल्म ही 100 में से 1000 नंबर दिए जाएं तो शायद, तो मैं तो वो भी दे दूं, लेकिन ये गणित के हिसाब से पॉसिबल नहीं है। लेकिन वाकई बहुत ही खूबसूरत मूवी और बहुत खूबसूरत अदाकारी, और गज़लों की तो बात ही क्या है। और मैं कहती हूँ, मैं तो ये भी मानती हूँ कि गज़लों की जो एक परिभाषा फिल्मों में बदली, या जो मुखर होकर गज़लें इस तरह से आई गाई गई, तो वो उमराव जान मूवी से कहीं ना कहीं बहुत हद तक शुरू हुई। बहरहाल अब जो वक्त है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ता जा रहा है, और कहते हैं कि वक्त के साथ साथ चलना इंसान की सबसे बड़ी खूबी होती है। तो हम भी वक्त के साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन चलते चलते ये खूबसूरत सी गजलें कैसे छोड़ दें। एंजॉय दिस ट्रैक और गजल जगजीत जी की आवाज़ में। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

जी हाँ, आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंगीन महफिल, जिसमें हम गजलों की बात कर रहे हैं, गजलों को सुन रहे हैं। गजलों की दुनिया ही बहुत अलग होती है। इसका म्यूजिक, इसका वक्त ऐसा होता है कि हम खुद में बहुत ही गुम हो जाते हैं, जाने कहाँ चले जाते हैं। और रात का वक्त हमारा अपना, हमारी तन्हाई से हमें जोड़ता। तन्हाई हमेशा दुखदाई नहीं होती है, तन्हाई कभी कभी खुद को रिचार्ज करने के लिए भी होती है। जी हाँ, जब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो बहुत चुप रहने का मन करता है, और या फिर हम बहुत सुकून ढूंढते हैं तो चुप रहने का मन करता है। भागदौड़ भरी ये ज़िंदगी, इसमें थोड़ा सा वक्त अगर हमें मिल जाए रंगी महफिल प्रोग्राम के ज़रिए, तो फिर कहने ही क्या। सुन रहे हैं प्रोग्राम रंगी महफिल आकाशवाणी रेनबो पर।

जी हाँ, वक्त हालात जिंदगी में कभी कभी ऐसे भी आ जाते हैं, लेकिन जिंदगी के हर वक्त को हम तब आसानी से निकाल लेते हैं जब हम मजबूत होते हैं। तो खुद को थोड़ा सा मजबूत जरूर रखिए, जिंदगी के हर उतार और चढ़ाव से लड़ने के लिए तैयार रहिए। और कहते हैं कि जिंदगी इतनी ज्यादा आसान है, बस उसे समझने की जरूरत है। फिलहाल अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है, क्योंकि घड़ी की सुइयां टिक टिक कर मुझे बता रही हैं कि चलिए अब इजाजत ले लीजिए। तो आपसे इजाजत लेने के साथ साथ ये जरूर कहूंगी कि जिंदगी का फलसफा सिर्फ इतना है, इसे जीते जाइए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और ये जाते जाते एक बहुत ही प्यारी सी गजल मैं प्ले कर रही हूँ आपके लिए, इसे सुनिएगा। और इस गजल में सुष्मिता सेन की खूबसूरत सी आवाज भी है और बहुत ही खास ये गजल लगती है सुनने में भी और देखने में भी। तो जाते जाते इस गजल को मैं प्ले कर रही हूँ आपके लिए, इसे सुनिएगा, एंजॉय करते रहिएगा और आकाशवाणी रेनबो के साथ यूं ही बने रहिएगा। अपनी दोस्त गीतांजलि को दीजिए इजाजत। गुड नाइट।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने अभी तक विधानसभा की 293 सीटों में से 203 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 72 सीटों पर जीत दर्ज की। वाम दल को एक सीट मिली है, अन्य को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से 15,000 से अधिक मतों से हार गई हैं। नंदीग्राम सीट

भी सुवेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर इतिहास रचने जा रही है। टीवी के ने 105 सीटें जीत ली हैं। टीवी के अध्यक्ष विजय ने अपनी दोनों सीटों पेरम्बूर और तिरुची में जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके ने 59 सीटों पर जीत हासिल की। AIADMK ने 46 सीट जीते हैं। कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की और भारतीय जनता पार्टी 1 सीट जीती है। कोलाथूर सीट से मुख्यमंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के उम्मीदवार एम के स्टालिन को तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी के वीएस बाबू ने हराया। केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट UDF ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसकी निर्णायक वापसी का संकेत है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML ने 22 सीटें जीत ली हैं। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM ने 26 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ANRC के तहत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन NDA की सरकार फिर से बनने जा रही है। कुल 30 सीटों में से 29 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की AINRC और सहयोगी दलों को 17 सीटें मिली हैं। भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। AIADMK कांग्रेस को 1-1 सीट मिली है। DMK ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि ये चुनाव परिणाम लोकतंत्र की जीत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने केरलम के लोगों को निर्णायक जनादेश के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि केरलम में प्रतिभा है, क्षमता है और UDF सरकार इन दोनों का सदुपयोग करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने पुदुचेरी में विधायक दल का नेता चुनने के लिए वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया तथा पुदुचेरी के प्रभारी निर्मल कुमार सुराना को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इन नामों को बीजेपी की संसदीय बोर्ड ने मंजूरी दी है। IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया है। मुंबई ने 19वें ओवर में 229 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। लखनऊ ने निर्धारित ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 228 रन बनाए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी
1: 12:05 और 38 सेकंड हुए हैं। शुरू करते हैं बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम जिसका नाम है जीरो आर शो। मैं हूं एसएम शरीफ, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

नए तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने अभी तक विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 78 सीटों पर जीत दर्ज की, वाम दल को एक सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से 15,000 से अधिक मतों से हार गई हैं। नंदीग्राम सीट से भी सुवेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर इतिहास रचने जा रही है। टीवीके ने 106 सीटें जीत ली हैं। टीवीके के अध्यक्ष

0: मंडिया ने अपनी दोनों सीटों परम्बूर और तिरुचि में जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके ने 59 सीटों पर जीत हासिल की। एआईएडीएमके 47 सीट जीत चुकी है। कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की और भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट जीती है। कोलाथुर सीट से मुख्यमंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के उम्मीदवार एमके स्टालिन को तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी के वीएस बाबू ने हराया। केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसकी निर्णायक वापसी का संकेत है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आईयूएमएल ने 22 सीटें जीत ली हैं। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम ने 26 सीटें जीती हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एआईएनआरसी के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार फिर से बनने जा रही है। कुल 30 सीटों में से 29 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की एआईएनआरसी और सहयोगी दलों को 17 सीटें मिली हैं। भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। एआईएडीएमके कांग्रेस को 1-1 सीट मिली है। डीएमके ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। महाराष्ट्र में बारामती सीट पर उपचुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुनेत्रा अजीत पवार विजयी रही हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि ये चुनाव परिणाम लोकतंत्र की जीत है।
1: 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
0: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने केरलम के लोगों को निर्णायक जनादेश के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि केरलम में प्रतिभा है, क्षमता है और यूडीएफ सरकार इन दोनों का सदुपयोग करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने पुदुचेरी में विधायक दल का नेता चुनने के लिए वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया तथा पुदुचेरी के प्रभारी निर्मल कुमार सुराना को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इन नामों को बीजेपी की संसदीय बोर्ड ने मंजूरी दी है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। रयान रिकल्टन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने अभी तक विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की, वाम दल को एक सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से 15,000 से अधिक मतों से हार गई हैं। नंदीग्राम सीट से भी सुवेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर इतिहास रचने जा रही है। टीवीके ने 106 सीटें जीत ली हैं। टीवीके के अध्यक्ष विजय ने अपनी दोनों सीटों पेरम्बूर और तिरुची में जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके ने 59 सीटों पर जीत हासिल की। एआईएडीएमके 47 सीट जीत चुकी है। कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की और भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट जीती है। कोलाथुर सीट से मुख्यमंत्री और डीएमके उम्मीदवार एमके स्टालिन को तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी के वीएस बाबू ने

कराया। केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसकी निर्णायक वापसी का संकेत है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML ने 22 सीटें जीती हैं। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM ने 26 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस AINRC के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की सरकार फिर से बनने जा रही है। कुल 30 सीटों में से 29 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की AINRC और सहयोगी दलों को 18 सीटें मिली हैं। भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। AIADMK कांग्रेस को एक एक सीट मिली है। DMK ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि ये चुनाव परिणाम लोकतंत्र की जीत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने केरलम के लोगों को निर्णायक जनादेश के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि केरलम में प्रतिभा है, क्षमता है और UDF सरकार इन दोनों का सदुपयोग करेगी। केरलम में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। हालांकि राज्यपाल ने पिनाराई विजयन से अनुरोध किया है कि नई सरकार के शपथ लेने तक वे कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में अपने पद पर बने रहें। भारतीय जनता पार्टी ने पुदुचेरी में विधायक दल का नेता चुनने के लिए वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया तथा पुदुचेरी के प्रभारी निर्मल कुमार सुराना को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इन नामों को BJP की संसदीय बोर्ड ने मंजूरी दी है। संयुक्त अरब अमीरात के फुजैराह में हुए हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए हैं। अबू धाबी स्थित भारतीय दूतावास ने एक बयान में कहा कि वे प्रभावित भारतीय नागरिकों की उचित चिकित्सा देखभाल और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी
1: 2:05 और 43 सेकंड हुए हैं। शुरू करते हैं कार्यक्रम भुलाए ना बने।

0: मुस्कुराई पहले जरा आप मुस्कुराई
1: पहले जरा आप मुस्कुराई। कोयल सी तेरी बोली तेरी ची नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मुकेश जी का नाम आते ही बहुत सी यादें भर आती हैं। मुकेश जी के साथ मेरे बहुत प्रोफेशनल रिलेशंस बहुत देर से नहीं थे, लेकिन इमोशनल रिलेशंस बहुत ज्यादा थे। मुझे सिर्फ एक दुख है कि मैं उनको बहुत देर से मिला। इतने बड़े सिंगर, इतने महान कलाकार होते हुए उनमें कोई किस्म का ईगो, कोई किस्म की ये बात मैं यहाँ ये ना करूँ, वहाँ वो ना करूँ। जब वो किसी से प्यार करते थे तो दिल खोल के करते थे, और उसको जब किसी को भाई बोल दिया तो भाई समझते थे। जितने लोगों की मदद जिंदगी में उन्होंने की है, बहुत कम लोगों ने की होगी। मुकेश जैसे इंसान आज के दौर में पैदा ही नहीं होते।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने अभी तक विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की, वाम दल को एक सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से 15,000 से अधिक मतों से हार गई हैं। नंदीग्राम सीट से भी सुवेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर इतिहास रचने जा रही है। टीवीके ने 234 में से 108 सीटें जीत ली हैं। टीवीके के अध्यक्ष विजय ने अपनी दोनों सीटों परम्बूर और तिरुचि में जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके ने 59 सीटों पर जीत हासिल की। AIADMK 47 सीट जीत चुकी है। कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की और भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट जीती है। कोलाथुर सीट से मुख्यमंत्री और डीएमके के उम्मीदवार एमके स्टालिन को तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी के वीएस बाबू ने हराया। केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट UDF ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसकी निर्णायक वापसी का संकेत है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML ने 22 सीटें जीत ली हैं। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM ने 26 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस AINRC के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की सरकार फिर से बनने जा रही है। सभी 30 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की AINRC और सहयोगी दलों को 18 सीटें मिली हैं। भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। AIADMK कांग्रेस को 1-1 सीट मिली है। DMK ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी

कांग्रेस पार्टी को एक सीट मिली है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। केरला में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। हालांकि राज्यपाल ने पिनाराई विजयन से अनुरोध किया है कि नई सरकार के शपथ लेने तक वे कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में अपने पद पर बने रहें। सोमवार को कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की बढ़ोतरी हुई। ये बढ़ोतरी ईरान द्वारा पिछले 24 घंटों में संयुक्त अरब अमीरात और पश्चिम एशिया के खाड़ी क्षेत्र में जहाजों पर हमले तेज करने के बाद हुई है। इसे अप्रैल की शुरुआत में अमरीका और ईरान के बीच लागू हुए युद्ध विराम के बाद सबसे गंभीर स्थिति माना जा रहा है। दिल्ली में तेज बारिश और तूफान के बाद ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले कुछ घंटों में ओलावृष्टि, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि कश्मीरी गेट, इंडिया गेट, अक्षरधाम, सफदरजंग, नेहरू स्टेडियम, डिफेंस कॉलोनी और लाजपत नगर सहित दिल्ली के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही बिजली गिरने के साथ तूफान आने की भी प्रबल संभावना है, जिसमें हवाएं 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ और मैं दीक्षा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस वक्त रात के हो रहे हैं 3:05 और अब वक्त है हमारे कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज का। जी हाँ, नॉन स्टॉप बॉलीवुड म्यूजिक हम आपको सुनवाएंगे हमारे इस कार्यक्रम में। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सेगमेंट की फिल्म हीरो नंबर 1 से।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग

होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने अभी तक विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की, वाम दल को एक सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से 15,000 से अधिक मतों से हार गई हैं। नंदीग्राम सीट से भी सुवेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर इतिहास रचने जा रही है। टीवी के ने 234 में से 108 सीटें जीत ली हैं। टीवी के अध्यक्ष विजय ने अपनी दोनों सीटों पेरम्बूर और तिरुची में जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके ने 59 सीटों पर जीत हासिल की। एआईएडीएमके 47 सीट जीत चुकी है। कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की और भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट जीती है। कोलाथूर सीट से मुख्यमंत्री और डीएमके के उम्मीदवार एमके स्टालिन को तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी के वीएस बाबू ने हराया। केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसकी निर्णायक वापसी का संकेत है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आईयूएमएल ने 22 सीटें जीत ली हैं। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम ने 26 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को 7 सीट मिली है। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस AINRC के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की सरकार फिर से बनने जा रही है। सभी सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की AINRC और सहयोगी दलों को 18 सीटें मिली हैं। भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। AIADMK कांग्रेस को 1-1 सीट मिली है। DMK ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं

को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। केरलम में राजनीतिक बदलाव के बीच मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। हालांकि राज्यपाल ने पिनराई विजयन से अनुरोध किया है कि नई सरकार के शपथ लेने तक वे कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में अपने पद पर बने रहें। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने सत्तारूढ़ एलडीएफ सरकार को हराकर जीत हासिल की है। दिल्ली में तेज बारिश और तूफान के बाद ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले कुछ घंटों में ओलावृष्टि, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 228 रन बनाए। जवाब में मुंबई इंडियंस ने 19वें ओवर में 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर, और इस वक्त सुबह के 4:05 हुए हैं और अब वक्त है हमारे कार्यक्रम सारे गामा का। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम का, जिसमें आप सुनेंगे नॉन स्टॉप गीत।

अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: तुमसा कोई दूसरा इस समीप हुआ तो रब से शिकायत होगी, तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ

सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।